فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون

يَكْسِبُونَ.

0: Times, drone against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime. Pakistan stands in complete solidarity with the brotherly people of Saudi Arabia, as we always have throughout our history.
1: हरमैन शरीफ़ जी हुरमत ऐं सलामती असांजी रेल लाइन आहे। मक्का मुकरमा ते ड्रोन हमले जी कोशिश सॼी दुनिया जे मुसलमान में सख़्त कावड़ ऐं दुख पैदा कयो। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट तहत पाकिस्तान सऊदी अरब जो साथ ॾींदो। अमरीका ईरान विच में जंग ख़तम थियणु घुर्जे। नाज़ुक मोड़ ते पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त नामे वसीले ईरान ऐं अमरीकी खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारे तारीख़ अगबराई कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ गयल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली इजलास खे ख़िताब दौरान खिते में जंग जो ख़ात्मो चाहियूं था। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। जंग सबब हरमुज़ लंघ जहिड़ा आम सामूंडी रस्ता सख़्त दबाव में अची विया। आलमी मैशियत जे मर्कज़नि हरमुज़ लंघ ऐं बाबुल मदब खे खुलियल रहणु घुर्जे।
0: Pakistan faced external aggression from India under a false pretext. Pakistan exercised its inherent right of self-defense under Article 51 of the United Nations Charter. Our brave and valiant armed forces, under the courageous leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, responded with precision and professionalism. They silenced the enemy, repulsed its attack, and taught it a lesson it shall never ever forget.
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त गुज़िरियल साल पाकिस्तान भारत जी बिना जवाब जारियत खे मुंहुं ॾिनो। फील्ड मार्शल जी जुरत मदाणी क़यादत में बहादुर फ़ौज पेशवराणी सलाहियत सां दुश्मन खे ख़ामोश कराईंदी, कॾहिं न विसारण जोॻो सबक़ सेखारियो। वज़ीर आज़म जो ॿिनि एटमी ताक़तुनि विच में जंग रोकण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप जी वक़्त सिर मुदाख़लत जो एतिराफ़। वलायल कश्मीर तकरार जो मुनसफ़ाणो हल इंतिहा ज़रूरी आहे। अठ ॾहाकनि खां कश्मीरी अवाम गॾियल क़ौमुनि तरफ़ ॾिसी रहियो आहे। गॾियल क़ौमूं कश्मीरियुनि जे हक़ ख़ुदिरादत बाबति पंहिंजो वाइदो पूरो कनि। पाकिस्तान कश्मीरी भाइरनि ऐं भेनरुनि जे इख़्लाक़ी सियासी सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। फ़लस्तीनी अवाम नसलनि खां आज़ादी जी जंग विढ़ी रहियो आहे। इसराइली तशदुद जो उलंदे किनारे ताईं पखिड़जण ताईं गणती जोॻो आहे। फ़लस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती बेदख़ली इसराइल जे नसुल कशी वारे एजेंडा खे ज़ाहिरु करे थी। हू 1967 खां पहिरियां वारियुनि सरहदुनि ते ॿधल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो क़याम चाहिनि था। लिबनान ऐं शाम ख़िलाफ़ जारी इसराइली जारत बि मज़मत जोॻी आहे। मक्का मुआहिदे में शामिल मुल्कनि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सऊदी अरब में इजलास। ISPR मूजिब इजलास में सिक्योरिटी सूरतहाल सऊदी अरब खे दरपेश ख़तरनि जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में मक्का मुकरमा जी शहरी आबादी ऐं इक़्तिसादनि अदावतुनि ते हमलनि जी मज़मत, शिरकत कंदड़ हथियारबंद फ़ौज जी पेशावरनि सलाहियतुनि खे साराहियो। इजलास में टिन्ही मुल्कनि जी फ़ौज विच में तआवुन खे हथी ॾियण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान अमरीका सां जंग जारी रखणु नथो चाहे। हाणे जंग ख़तमु करण जो फ़ैसिलो अमरीका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिकु ॿिए खे क़तलु करण जी ज़रूरत न आहे। अमरीकी हुकूमत आलमी क़ानून तहत मुआदो करणु चाहे थी त ईरान तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त जेकॾहिं अमरीका कुझु शर्तनि ते अमल करे त अबनाह हुर्मुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद अलानी लॉन्ग मार्च मुलतवी, 4 अक्टूबर ते करण जो ऐलान। KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त असांजो लॉन्ग मार्च हाणे 4 अक्टूबर ते पिशावर खां निकरंदो, जेको लाज़मी इस्लामाबाद पहुचंदो। फ़ैसिलो सियासी कमेटी इतफ़ाक़ राय सां कयो आहे। सुध समाज वारे वफाकी वजीर तातार चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़दिल आहिनि जंहिं सबब ई हिननि लॉन्ग मार्च मुल्तवी कयो आहे। हिननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी टी टी पी जी बी टीम आहे। केपी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टी टी पी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्द जी मज़मत बंदा आहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 2 पैसा फी लीटर मां अॻो 9.91 रुपया 30 पैसा थी वियो। डीज़ल 3 रुपया 59 पैसा घटिताई खां पोइ फी लीटर 468.53 रुपया फी थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोलियम शयुनि जा अघु 28 सेप्टेम्बर ताईं मुक़ररु हूंदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई खे ख़त लिखी ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। ज़रियो चवणो आहे त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर खे ॻाल्हियुनि ऐं इलेक्शन कमीशन में मोकिलियुनि बाबति ख़त लिखियो आहे। अपोज़िशन लीडर जे तर्जुमान वज़ीर आज़म जे ख़त मिलण जी तस्दीक करे छॾी। हुकूमत ते ॻाल्हियुनि तां फिरण जो बि इल्ज़ाम लॻायो। पाकिस्तान विचोभर में अमुन वारियुनि कोशिशुनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सड़ककारी लाइ खिते में ड्रिगे मुदे लाइ अमुन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सड़ककारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तहकम थियण बैदि तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटलाइज़ करणु टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कमु तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राइत मदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सड़ककारी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। मदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत बि सड़ककारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि जिन मां फ़ाइदो हासिलु करे सघिजे थो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी फोर्सिस जा ऑपरेशन 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि नौशुकी ज़िले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दौरान सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ठिकाणे खे निशानो बणायो। फायरिंग जे ॾे वठि में 11 दहशतगर्द मारिजी विया। मजमूई तौर ते 21 सेप्टेम्बर खां अॼु ताईं 33 दहशतगर्द मारिजी विया। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जी अफ़गानिस्तान तरफ़ां पाकिस्तान ते ड्रोन हमले जी मज़मत। संदसि चवणु आहे त ड्रोन हमला पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी भञकड़ी आहिनि। सिक्योरिटी इख़्तियारनि ड्रोन ज़दफ़ ताईं पहुचण खां अॻु नाकाम बणाया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ड्रोन लांच ऐं ज़खीरे जे मर्कज़नि खे निशानो बणायो। अफ़गान इख़्तियारियूं जवाबु ॾियनि त हमला छो थिया। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई अफ़गान हुकूमत जी ज़िमेवारी आहे। पायदार अमुन लाइ अफ़गानिस्तान मां पाकिस्तान मुख़ालिफ़ कार्रवायूं बंदि थियणु घुरिजनि।

सिंध हुकूमत पारां कूड़ियुनि ख़बरुनि जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वठण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जीना मेमून जी सदारत हेठि इतलाआत खाते जो इजलास। समूरनि शोबनि जे डायरेक्टर्स खे फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग ऐं सराइती मीडिया हुकूमत अमली जोड़ण जी हिदायत। शर्जीना मेमून चयो त कूड़ियुनि ख़बरुनि ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान रसाइण वारी कोशिश बर्दाश्त न कबी। फेक न्यूज़ जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वरिती वञे। मलेर में स्टील मिल जे जमीन ते रथाऊं नाला तब्दील करण शुरू करण जो इच्छाक। सिस्टम बीहर फाल थियण जा बि इल्ज़ाम। मलेर में गुलशन इब्राहिम खां पोइ साॻी ज़मीन ते मलाइका गिरी जे नाले सां नई हाउसिंग स्कीम जो कमु शुरू कयो वियो। नेम नोटिस खां पोइ बंदि थियल प्रोजेक्ट गुलशन इब्राहिम नए नाले मलाइका गिरीन सां ॿीहर कमु करणु लॻो। नेब जे केस ठाहियल स्टील मिल जे 1377 एकड़ ज़मीन ते नई रिहाइशी स्कीम जो इफ़्ताह बि थी वियो। नई स्कीम ज़रिए अवाम खां करोड़नि रुपया ठगजण जो ख़दशो। मलेर ऐं भरपासे जे अवाम गैर क़ानूनी ठहंदड़ राज स्कीम मलाइका गिरीन ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो करे छॾियो। सिंध में तकरारनि सां ॿिनि औरतुनि समेत चार ॼणा क़तलु। ॾोकिरी भरिसां हथियारबंदनि हथां संगावती तकरार सां औरत क़तलु। ॻोठ गुड में हथियारबंदनि सदफ़ धीउ नदीम बुगियो खे पिस्टल जा फायर करे क़तलु कयो। मक़तूल नारी जे माउ जो गुणे मुड़ सोयल गोपांग ते साथियुनि सां गॾिजी क़तलु करण जो इल्ज़ाम। नवाब शाह में संगावती तकरार सां सोट रथां सोट क़तलु। भंगवार कॉलोनी में जवाबदार सिंगार अली खे क़तलु कयो। जाती में ॿारनि बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो नौजवान अल ॾिनो ॿारनि क़तलु। नौशर फिरोज में बाईपास वटि हथियारबंदनि जी फायरिंग औरत क़तलु। सनस मुड़ुसु ज़ख़्मी हथियारबंदनि जी फायरिंग में यासमीन चांडियो मारिजी वई। सनस मुड़ुसु अब्दुल रज़ाक चांडियो ज़ख़्मी थियो। हैदराबाद जे कासिमाबाद वारे इलाइक़े में वधी वियल बदमनी ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक जो इजाज। बदमनी चोरियुनि ऐं फुरुनि ख़िलाफ़ क़ौमी अवामी तहरीक पारां नसीम नगर चौक ते मुज़ाहिरो कयो वियो। ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कारवायूं तेज़ करे कासिमाबाद में अमन बहाल कराइण जो मुतालबो। हैदराबाद में चांवरनि जो वापारी हथियारबंदनि हथां क़तलु। कार मां लाश हथ टंडो यूसुफ थाणे जी हद मां मिलियल लाश जी नरेश कुमार तौरु सुञाणप थी। पुलिस जो चवणु आहे त नरेश

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: times, against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkatul Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime. Pakistan stands in complete solidarity with the brotherly people of Saudi Arabia, as we always have throughout our history.
1: हरमैन शरीफ़ जी हुरमत ऐं सलामती असांजी रेल लाइन आहे। मक्का मुकरमा ते ड्रोन हमले जी कोशिश सॼी दुनिया जे मुस्लमान में सख़्त कावड़ ऐं ॾुख पैदा कयो। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट तहत पाकिस्तान सऊदी अरब जो साथ ॾींदो। अमरीका ईरान विच में जंग ख़तम थियणु घुर्जे। नाज़ुक मोड़ ते पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफ़ामती यादाश्त नामे वसीले ईरान ऐं अमरीकी खे ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते विहारे तारीख़ी अॻभराई कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ गयल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली इजलास खे ख़िताब दौरान दिफ़ाई मुआवज़े ख़िदमतुनि ते फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खे ख़राज तहसीन पेश कंदे चयो त ख़िते में जंग जो ख़ात्मो चाहियूं था। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। जंग सबबि हरमुज़ लंग जहिड़ा आम सामूंडी रस्ता सख़्त दबाव में अची विया। आलमी मैशत जे मर्कज़नि हरमुज़ लंग ऐं बाबुल मदब खे खुलियल रहणु घुर्जे।
0: Pakistan faced external aggression from India under a false pretext. Pakistan exercised its inherent right of self-defense under Article 51 of the United Nations Charter. Our brave and valiant armed forces, under the courageous leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, responded with precision and professionalism. They silenced the enemy, repulsed its attack, and taught it a lesson it shall never ever forget.
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त गुज़िरियल साल पाकिस्तान भारत जी बिना जवाब जारियत खे मुंहुं ॾिनो। फील्ड मार्शल जी ज़ुरतमंदाणी क़यादत में बहादुर फ़ौज पेशवराणी सलाह सां दुश्मन खे ख़ामोश कराईंदी, कॾहिं न विसारण जोॻो सबक़ सेखारियो। वज़ीर आज़म जो ॿिनि एटमी ताक़तुनि विच में जंग रोकण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप जे वक़्त सिर मुदाख़लत जो एतिराफ़। ओलायल कश्मीर तकरार जो मुनसिफ़ाणो हल इंतिहा ज़रूरी आहे। 8 ॾहाकनि खां कश्मीरी अवाम गॾियल क़ौमुनि तरफ़ ॾिसी रहियो आहे। गॾियल क़ौमूं कश्मीरियुनि जे ख़ुदिरादत बाबति पंहिंजो वाइदो पूरो कनि। पाकिस्तान कश्मीरी ॿाहिरनि ऐं बहिरुनि जे इख़्लाक़ी सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। फ़लस्तीनी अवाम नसलनि खां आज़ादी जी जंग विढ़ी रहियो आहे। इसराइली तशद जो ओलंदे किनारे ताईं पखिड़जण ताईं गणती जोॻो आहे। फ़लस्तीनियुनि जी ज़बरदस्ती बेदख़ली इसराइल जे नसुल कशी वारे एजेंडा खे ज़ाहिर करे थी। हू 1967 खां पहिरियां वारियुनि सरहदुनि ते ॿधल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जो क़याम चाहिनि था। लिबनान ऐं शाम ख़िलाफ़ जारी इसराइली ज़ियारत बि मज़मत जोॻी आहे। मक्का मुआहिदे में शामिल मुल्कनि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस ऐं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सऊदी अरब में इजलास। ISPR मूजिब इजलास में सिक्योरिटी सूरतहाल सऊदी अरब खे दरपेश ख़तरनि जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में मक्का मुकरमा जी शहरी आबादी ऐं इक़्तिसादनि अदावतुनि ते हमलनि जी मज़मत, शिरकत कंदड़ हथियारबंद फ़ौज जी पेशावरनि सलाहियतुनि खे सराहियो। इजलास में टिनी मुल्कनि जी फ़ौज विच में तआवुन खे हथी ॾियण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरान अमरीका सां जंग जारी रखणु नथो चाहे। हाणे जंग ख़तमु करण जो फ़ैसिलो अमरीका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़दीशकियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत न आहे। अमरीकी हुकूमत आलमी कानून तहत मुआदो करणु चाहे थी त ईरान तयारु आहे। ईरानी परे वज़ीर अब्बास इराकी चयो आहे त जेकॾहिं अमरीका कुझु शर्तनि ते अमल करे त अबनाह हुर्मुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद अलानियल लॉन्ग मार्च मुलतवी, 4 अक्टूबर ते करण जो ऐलान। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी चयो आहे त असांजो लॉन्ग मार्च हाणे 4 अक्टूबर ते पिशावर खां निकिरंदो, जेको लाज़मी इस्लामाबाद पहुचंदो। फ़ैसिलो सियासी कमेटी इतफ़ाक़ राय सां कयो आहे। सुध समाए वारे वफाकी वजीर तातार चयो आहे त पीटीआई वारा बुज़दिल आहिनि जंहिं सबबि ही हिननि लॉन्ग मार्च मुल्तवी कयो आहे। हिननि में हिमत आहे त लॉन्ग मार्च करे ॾेखारनि। पीटीआई दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी ऐं टी टी पी जी बी टीम आहे। के पी जो वॾो वज़ीर सूबे जो वॾो वज़ीर घटि ऐं टी टी पी जो कमांडर वधीक लॻंदो आहे। पीटीआई वारा दहशतगर्दनि जी मज़मत बंदा आहिनि कंदा। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी पीटीआई जी पॉलिसी आहे। वफ़ाक़ हुकूमत ईंदड़ टिनि ॾींहनि लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी। पेट्रोल 2 रुपया 2 पैसा फी लीटर मां गोनो 391.30 रुपया थी वियो। डीज़ल 3 रुपया 59 पैसा घटिताई खां पोइ फी लीटर 468.53 रुपया फी थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोलियम शयुनि जा अघ 28 सेप्टेम्बर ताईं मुक़ररु हूंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचक सई खे ख़त लिखी ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। ज़रियो चवणो आहे त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर खे ॻाल्हियुनि ऐं इलेक्शन कमीशन में मोकिलियुनि बाबति ख़त लिखियो आहे। अपोज़िशन लीडर जे तर्जुमान वज़ीर आज़म जे ख़त मिलण जी तस्दीक करे छॾी। हुकूमत ते ॻाल्हियुनि तां फिरण जो बि इल्ज़ाम लॻायो। पाकिस्तान विचोभर में अमुन वारियुनि कोशिशुनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सड़ककारी लाइ ख़िते में ड्रिघे मुदे लाइ अमुन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सड़ककारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तक़िम थियण बाद तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटलाइज़ करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राइत, मदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सड़ककारी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। मदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत बि सड़ककारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिलु करे सघिजे थो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी। फोर्सिस जा ऑपरेशन 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि नौशुकी ज़िले में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दौरान सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे ठिकाणे खे निशानो बणायो। फायरिंग जे ॾे वठि में 11 दहशतगर्द मारिजी विया। मजमूई तौर ते 21 सेप्टेम्बर खां अॼु ताईं 33 दहशतगर्द मारिजी विया। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी जी अफ़गानिस्तान तरफ़ां पाकिस्तान ते ड्रोन हमले जी मज़म्मत। संदसि चवणु आहे त ड्रोन हमला

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

عرش فرش نو مظہر نور کیتا نور نبی دانا اپنا کدا شمس کدا مل

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: ॾाढो सुठो
1: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: मके दिफाई मुआहदे के अस्करी सहकार में तब्दील करण जो आज़म। मके मुआहदे में शामिल मुल्कन जे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस एंड चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो सऊदी अरब में इजलास। ISPR मौजूद इजलास में सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं सऊदी अरब के खतरन जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में मके जे शहरी आबादी ऐं इक़्तिसादी अॾावतनि ते हमलनि जी मज़म्मत, शिरकत कंदड़नि हथियारबंद फ़ौज जे पेशावरनि सलाहियतनि खे साराहियो। इजलास में टिनी मुल्कनि जे फ़ौज विच में तआवुन खे हथी ॾियण ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे सते ॾींहं वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी आहे। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। वकीलनि जो चवण आहे त सिंध पुलिस जी रटिया आहे जो कोर्ट जे गेट आॾो रुकावटूं विझी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिन वक़्त ताईं हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

கோட்டமே மாறு சாம் மிலந்தாஸ் கோட்டியும் சடே.

जनी जा थरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहनोई न लजाई जा सागल सदाई उहा मारन

0: चढ़ी आयस जीअं शल पहिरी वञा तन ॾे लालाई जो लतीफ़ जे कर मुदन उठा मींहं माड़ीअ लॻुम मेरो सभ जमा दर सीअं खेसि सायारी कांध जी हुतां अचे तीअं कंधु खणंदसि कीअं अॻियां मन मारू अड़नि जे हलो
1: मुस्तकीम इहो पवार

ఉన్నతము ఘమ

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: Oh, my God.

چائی

पुछन बियो भेरो ये कुर्बानी केर थियो ओ पागल कजी तो दिया ओ हियो सारु हथन वनी खा विलायत में अग्यों अजीब ओ प्री मान चवल कहिया कुर्बानी केर थियो।

पर देन जी कांगल कर खबर सब मड़ाया सोन में पखी तुझा पर ओ भूमि मथों घर।

ਓ ਸਾਜਨ ਖੂਤ ਬਗਾਲ ਦੁਨੀਆ।

एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्धराम मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्धराम के साथ मौजूद ही जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। तो डियर लिसनर्स, अंदर की हालत कैसे है आपकी हालत? उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी ना, वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगी। और इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ करेंगे जी इन्नी शाली बातें, और इन्नी शाली बातों में हम जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी वक्तन फवक्तन याद करवाएंगे आप लोगों को, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या फायदे हैं वो भी आप लोगों को बताते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि बहुत सारी खवातीन हमें किचन में सुन रही होंगी, आंटियाँ अम्मियाँ और खालाएं बाजियाँ। और इसी के साथ साथ खाना बनाते बनाते हमारा प्रोग्राम इंजॉय कीजिए। और बाकी अगर आप वेले शेले ही हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको भी वेलकम कहते हैं। और यहाँ पर आपके होंठों पर 440 उल्की संभालाने का काम करेगी भाई जानी सिद्धरा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की संभाल लाते हैं। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हम आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही खूबसूरत से जो है वो कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा सुनते हैं, उसके बाद वापस आकर आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है और आप लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से किस तरह फायदा उठाने वाले हैं। तो बिल्कुल जी सब कुछ बताएंगे और वापस आकर आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान क्या बात है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कसीदा जो कि आपने यहाँ पर एंजॉय किया इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और क्यों जरूरी है ये बताया जाएगा अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए बाबू कहीं देर ना हो जाए ऐसा ना हो कि भाई सारे लोग खूबसूरत हो जाए बस आप ही पीछे रह जाए तो आपने भी जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज करना है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करना है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते जाना है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं इसी के साथ साथ आप तमाम लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये बताएं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जाएगा और इसी के साथ साथ आपको क्या तरीके कार फॉलो करके हमारे प्रोग्राम में जो है ना वो शामिल प्रोग्राम हो सकते हैं तो अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीके कार होंगे बताते हैं लेकिन आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बिल्कुल जी तो आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है वो एक पहेली होने वाली है और पहेली कुछ इस तरह से होगी कि आप मुझे बताइए किस चीज को देखने के लिए हाँ जी किस चीज को देखने के लिए उस चीज की ही जरूरत पड़ती है ये क्या हो सकता है किस चीज को देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ सकती है आप मुझे बताएं जल्दी से और अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो क्या करेंगे अपना सेलफोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है वहां पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जैसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं आप ही हमारे प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मुझे ये बताइए जनाब टॉपिक के ऊपर आपका क्या जवाब होने वाला है कि वो क्या है जिसे देखने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ जाती है और इसी के साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट आ जाता है कि जब आप जो है ना परचेज करने के लिए जाते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आप लोगों को दुकानदार जो ना वो चूना लगा देता है आपको कोई और पकड़ा देता है कहता है कि भाई ये ले जाएं ये प्रोडक्ट जो है ना आजकल चल रहा है अच्छा है ब्ला ब्ला ब्ला तो अगर आप भी इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं आप चाहते हैं कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें तो आपको जो नंबर प्रोग्राम में बताती हूँ ना और नंबर्स के ऊपर रब्ता रखा करें उन्हें कॉल किया करें उन्हें मैसेज किया करें उन्हें बताया करें कि हम फलां जगह से आपका प्रोग्राम सुनते हैं फलां जगह पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है तो आप अवेलेबल करा दें या फिर हमें बता दें कि कहां कहां पर अवेलेबल है ताकि हम जाकर जो है ना वहां से परचेज कर सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या क्या निशानियां हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी और साथ साथ आप जरा नंबर नोट कर लीजिए सबसे पहले तो आज का जो नंबर होने वाला है प्रोग्राम का वो होगा जनाब 0332738 4309 बड़ी 383 है 73 84 309 अब यो नंबर आहे 03125025907 बड़ी 312 50 25 907 ही बई नंबर समा डायल कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी अगर अवेलेबल आए पर तमा डी स्किन जो फेस वॉश कोन मिली रहयो आहे तो कोई भी तमा नंबर ते राबतो करे डी स्किन जो को फेस वॉश है ना ओ पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए बैठो ठीक है सो ही जनाब तमाजी आसानी चलाए हुंदा जी ता परेशान थियो आई ताके खबर होजे ता किथे वेना तो तवां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सा मिली सके थी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो आई खूबसूरत थींदा रहो उन के अलावा जेके माण्हू असां फेसबुक ते मौजूद आहिनि बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर लाज़मी कंदा कयो तव्हांजो कमु हूंदो आहे पंहिंजो कमु ईमानदारी सां कंदा कयो ॾिसो मां पंहिंजो कमु ईमानदारी सां कयां थी सो तव्हां बि पंहिंजो कमु ईमानदारी सां कयो सॼी पोस्ट के लाइक एंड शेयर करे छॾींदा कयो जे इलाही सारे माण्हुनि खे असां ॿुधाए सघूं त बाबा साईं तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ बि केतिरी ज़्यादा ज़रूरी आहे उन खां अलावा फरवा गुल हमारे साथ मौजूद आहिनि वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे मैं ठीक हूं जी आप बताएं कैसी हैं ठीक ठाक और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी ऑसम शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और हमारे साथ फहीम शेख कहते हैं कि रूह की राहत हुई जमानों बेमिसाल हो, मासूम जवानी हुई बारानों को ख्याल हो, न याद कहें जी न कहें जो इंतजार हो, न उजागो अखिन के नई बेचैनी दिल के, नई को बेवफा यार हो, मगर उस्ताद वा तदें जी गाला जदें न को न कहें सा प्यार हो, या गाल तदें जी थी सके थी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मदद और कहती अदा केड़ा हाल आहे न खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम गाड़ी मजे डबी असम जी वया सी प्रोग्राम ते लाजवाब आए हमेशा जिया तमा वांगे थैंक यू सो मच प्यारा भा मोहब्बत वन प्रोग्राम बुदो पया नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे के ते अकेलो रहन अकेलो विढ़न अकेलो जियन सिखो दुनिया कहजी नाही अस्सलाम वालेकुम अठियारी से नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे प्रोग्राम जबरदस्त थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और अलीशा आ चुकी है कहती अलीशा और किसी ने सच कहा है कि सुकून की बात करो तो वो अपने मनपसंद शख्स के अलावा और कहीं नहीं मिलता अल्लाह साईं ये आपने बड़ी अच्छी बात शेयर कर दी और हमारे साथ बतूल हैं बतूल मेमन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आई एम बतूल मेमन फ्रॉम सिटी मटियारी से माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम सारे साथ बैठकर आपका प्रोग्राम खुशी से सुनते हैं और अम्मी ने आपको सलाम भेजा है वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान और कहती हैं कि सारे सुनने वालों को भी सलाम आपकी पूरी टीम को बतूल की तरफ से सलाम सॉन्ग प्लीज चलाना निगत नाज का है समझा थी तो के हीरो नंबर वन मां ॾिसां थी मिलियो त हलाए वठूं था तव्हांजे लाइ गानो थैंक यू बतूली तव्हां सां सगड़ मौजूद आहे और हमारे साथी जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं ग्रेट होस्टिंग में मार्जी थैंक यू वेरी मच सर जी और महामार जमान कहते हैं माय नेबर्स वेटिंग इन अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल आप उनको मशवरा दीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना वो दो दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है तो आप उन्हें बोलिए कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा लें आप लगाना स्टार्ट कीजिए आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का मशवरा आप सबको दे सकते हैं वो भी इजीली और ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात भी नहीं कहीं जी स्किन भी खराब न थींदी आई हर स्किन वारो माण्हू आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सके तो तमाम भी लाजमी इस्तेमाल कयो जी तव्हांखे खबर पए त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो तव्हां जी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहे अच्छा चाचा खालिद आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बेटा सदो की आयो खुश आयो की गुजरियो जुमे जो दिन बस निंडरा कंदे गुजरियो है और फरवा गुल कहती हैं आपी अर्ज किया है मैं खामोश हूं तो पत्थर ना समझ मुझे मेरे दिल पे असर हुआ है किसी अपने की बात का सही और चाचा खालिद कहते हैं जबरदस्त आगाज डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो जो जबरदस्त कसीदे सा थैंक यू वेरी मच चाचा और मोहम्मद जमान कहते हैं दिस शो इज VIP थैंक यू वेरी मच अखलाक भाई हमारे साथ हैं बहुत शुक्रिया और महर इरफान सियाल साहब गुड आफ्टरनून आपको भी वेलकम के साथ इमरान अली उज्जैन हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम आरजे सिदरा मुस्कान बिल्कुल ठीक ठाक है आप हमें मोरी खान सुल्तान मोरी खान तवां सां के ज्वाइन कयो आहे सो थैंक यू आई तवां जे एरिया में बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली थी कोन और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है मुझे प्यारी भेण केड़ा हाल है खुश आयो सफा तांजी प्यारी भेण खुश मजे में आए और बरकत रमादानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं बलोचिस्तान से भाई को वेलकम कहते हैं अलीशा कहती है बिलीव मी
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

प्रोडक्ट्स के तावन से और एक्सपर्टीज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं, ताकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो सके कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए क्यों जरूरी हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं जरा आप लोगों के साथ खुला जो है ना बातें करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मैं जितनी भी बातें आप लोगों को बताती हूँ ना, वो सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही और जनाब उससे और ज्यादा जो है ना आप लोगों को अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो डिटेल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें वाले तो लाजमी हमारा प्रोग्राम सुनकर आप समझ लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात तो आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये सबसे पहली बात मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना उसकी ये चीज होती है कि भाई आप उसे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी केमिकल एड नहीं किया जाता जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सके। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है जनाब। ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर से जनाब प्रूव किया हुआ फार्मूला है, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने ही ये फार्मूला तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स, माइक्रो बीट्स, अल्फा आरबुटीन, गॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, इस तरह की चीजें ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों के प्रोडक्ट को जो है ना मजीद इन्हेंस करती है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आपके चेहरे को हमेशा के लिए चमकाने के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं जो ये वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन का जिक्र करती हूँ ना, तो इसका क्या काम है ये जरा इसकी जानिब आ जाते हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान में अगर सर्च करते हैं कितने सारे प्रोडक्ट आपको नजर आते होंगे, उन तमाम प्रोडक्ट्स में से ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये 2 से 3 प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए गए होंगे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन प्रोडक्ट्स में शामिल है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे पहली बात ये है कि भाई ये एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, दूसरा कि आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए और उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत भी करने के लिए है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात भी जनाब बिल्कुल वाजे आप लोगों को बताते चलो कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को जनाब जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये बाहर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाली ना ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया। तो जैसे आपके घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो हर किसी को चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जब स्किन नरमो मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, तो आपके चेहरे की जो रंगत है ना वो खुद ब खुद आपको अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके चेहरे पर ये प्रॉब्लम से जो ना वो दूर हो जाए तो फिर आपकी स्किन तो वैसे ही ग्लो करती रहेगी, आप वैसे ही ग्लो करते रहेंगे। तो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कीजिए जनाब, खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, और उनको ज्यादा प्रोडक्ट भी नीड नहीं होती या फिर ऐसा नहीं होता कि नॉलेज नहीं होती उनको कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो इसीलिए आप लोगों के खूबसूरती में इजाफा लाने के लिए, आपके खूबसूरत जल्द को जो है ना मजीद प्यारा बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप अपने रोजमर्रा की डेली के रूटीन में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपनी जल्द को केयर देने के लिए आप रोजमर्रा ब्यूटी केयर स्किन के अंदर जो उसका हिस्सा बना लीजिए, और सुबह अपनी रूटीन मुकम्मल करते हुए या फिर शाम दिन भर आपकी मसरूफियात की वजह से आपको ऐसा होता है कि भाई टाइम नहीं मिल पाता, हम सुबह को स्किन केयर नहीं कर पाते हैं तो चले रात को कर लेंगे, तो रात को बिल्कुल आप कीजिए। सबसे पहले ऐसा कीजिए अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से, क्योंकि डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है। फेस वॉश आप अच्छे से अपनी स्किन को जो है ना फेस वॉश करेंगे, अच्छे से चेहरे को क्लीन करेंगे, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। और रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि रात के टाइम लगाई जाने वाला ये प्रोडक्ट है और नाइट क्रीम है और आप लोगों के चेहरे के लिए 2-in-1 फार्मूला है। तो अच्छा खासा अगर आपको रिजल्ट चाहिए, और हाँ ये चीज जरा मैं क्लियर करती चलूं, क्योंकि मैंने जब ऐसे जिक्र किया कि आप लोगों को ये जो है ना फेशियल का रिजल्ट देने वाला है, तो कुछ लोगों के जहन में ये आता होगा कि जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको ऐसे मसाज के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे, क्या पता कि भाई ये फेशियल वाला रिजल्ट दे रही है, तो इसको फेशियल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है सिंपली अपना फेस वॉश करना है। डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, उसके बाद सुखा लेने के बाद चेहरा अच्छे से आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना अपने चेहरे पर अप्लाई करनी है। ये नाइट क्रीम है तो इसको आराम से प्यार से सुकून से उंगलियों की मदद से अपने चेहरे पर लगाइए, अपनी गर्दन पर लगाइए, अपने हाथों पैरों पर लगाइए, जहां भी आप लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली ये अपने चेहरे पर ही आप अप्लाई करते रहे, अपनी गर्दन पर भी लगाया करें, हाथों पैरों पर भी लगाया करें, जहां जहां आपको लगता है कि भाई हमें जरूरत है निखार की, गोरेपन की और खूबसूरती की, तो आप वहां वहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
लोशन आप बिल्कुल सुकून से लगाइए, प्यार से लगाइए और बस लगाने के बाद छोड़ दीजिए। क्रीम खुद आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी, आपकी स्किन के अंदर जो है ना जज्ब हो जाने के बाद आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स भी देती रहेगी और दो रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये तमाम बातें हैं जो कि आप लोगों को पूरे प्रोग्राम में बताती रहूंगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे पता चले कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं। जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपको अवेलेबल कराने पड़ेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आप नंबर्स के ऊपर राता कीजिए, नंबर्स के ऊपर राता करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और अपनी खूबसूरती को जरा सेव कीजिए, क्योंकि खूबसूरत होना और खूबसूरत रहना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरत तो बना रही है लेकिन साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करती जा रही है। तो खूबसूरती और खूबसूरती होंगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो जरा दोबारा रिपीट करते हैं, जिसका आप लोग मुझे जवाब दे रहे हैं और उन लोगों को पता चले जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि किस चीज को देखने के लिए उस चीज की ही जरूरत पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, आपने इस सवाल का जवाब देना है। हमारे प्रोग्राम का ऐसे बनते जाइए, 888-1 पर हमें ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पर हमें ज्वाइन कीजिए, फेसबुक की पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आ रही हूँ जी आके फीडबैक्स की जाने, लेकिन यहाँ पर ये जो गाना लगाया ना थोड़ा सा गाना भी सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो ऑलरेडी अपने आप को डायमंड रिंग जो ना वो गिफ्ट कर चुके हैं. मैं वो इंसान हूँ जैसे किसी की जरूरत ही नहीं है और हम अपनी आप को महंगे महंगे तोहफे दे देते हैं. क्या बात है जी. और यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद है हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. कैसी हो मुस्कान. आज इस शो में फरमाइश नहीं करूंगा, एक सॉन्ग है जो शाम वाले प्रोग्राम के लायक है तो शाम को फरमाइश करूंगा. हाँ हाँ ये ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपने हमें इजी छोड़ दिया. और उनके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर स्मार्टू गोपांग कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, मैं भी आ गया. आई एम लिसनिंग योर शो इन कंपर्सिटी, वेरी नाइस वॉइस डियर, थैंक यू. अच्छा जैन अली कहते हैं कि ऐब ढूंढोगे तो मिलेंगे ही, खुदा के बंदे हैं, खुदा थोड़ी है. सही बात है. अच्छा मोहम्मद जमान टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया. और अब्दुल गफार भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते सलामत रहो लाजवाब शो. मेलसी सी आप हमारे साथ मौजूद है भाई जान, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. इमरान अली उच्चन हमारे साथी टॉपिक, हाँ जी सही बात है, बहुत बढ़िया शुक्रिया. और स्मार्टू गोपांग आपका गाना लगाते हैं, थोड़ा सा सबर कीजिएगा जरा. अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि सुनने वालों को फकत फर्जी बयान लगता है, तेरा हर बोल मेरे दिल पर यहाँ लगता है यहाँ. थैंक यू.

बला है जो समझ ना आए, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हथो मत देखियो बाबा जेको जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी पाओ। इकबाल आशारी भाई हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से। इकबाल भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया। और स्मार्ट टू ठीक है आपका गाना लगाते हैं, सबर कहो बाबा सबर सबर सबर। मेहताब अली इंटर हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिस्टर। आइए मेहताब अली फ्रॉम सुल्तानपुर केंट। मेहता भाई आपको वेलकम कहते हैं, शुक्रिया के साथ। और फहीम भाई आपने लिंक शेयर कर दिए, ठीक है, और आपने जवाब दिया है वो भी ठीक है। और जैन अली कहते हैं कि वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं, आपसे मोहब्बत ही आपसे मोहब्बत है। क्या बात है जी, शायरियों का दिन तो नहीं है ऐसे ठकाठक आप शायरियाँ भेजे जा रहे हैं। और दिया परी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम दिया। अच्छा दिया कहती हैं कैसी हो आप, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। कहती हैं कि हम भी आ गए आपके शो में थोड़ी मुस्कान लेने, उम्मीद कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। प्लीज प्ले निगत मेला नसीब बन जा, डेडिकेट आपी आयत आपी अक्सा आपी नूर हिरा एंड डेविल। ओके समझ गए। अच्छा जावेद चांदी हमारे साथ कहते हैं कि किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। आए हाय ऐसी आदतें। अच्छा चाचा ठीक है, तव्हांजी लिंक असां ॾिसी वरिती आहे। इनके कौन छड़ींदासी बाबा, प्ले कंदासी प्ले कंदासी। और हमारे साथ हैं जी आद जरवार भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आद भाई, ठीक ठाक है। और मुझे बताएं आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पे मिल रही है या फिर नहीं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर फर्ज कर लीजिए नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको नंबर बताया है जिस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इजिली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। यस ये भी ऑफर है आप लोगों के लिए, बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराए, वहां से जाकर इजिली आप परचेज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भाई हम सिटी जाएंगे तो परचेज करेंगे, अलाए काथे मिले थी अलाए काथा मिलंदी, यो तमाम बिल्कुल भी न चाहो। बस तां पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, नंबर ते राबतो कयो, ऐं ठक तमाम जे सिटी में तमाम जे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वेंदी।

भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में। और फहीम भाई कहते अदा जुम्मे वाले दिन आपने नींद की, अब संडे वाले दिन हमारी छुट्टी है, कल हम सारा दिन नींद करके शाम को घूमेंगे। सैया बाबा एंजॉय करो जिंदगी, एक दफो तो मिली है। अनवर भाई कहते हैं कि सलाम अदी, थर्सडे शाम वाले प्रोग्राम जी पोस्ट अपलोड नहीं हुई, अच्छा फरमाइशूं हलियूं, हाँ हलायूं हुई शायद। अच्छा यो थोड़ो मसलो आए थे, जेका पोस्ट आना अध में रुकी जी वनी थी, पर जड़ी मु चेक कयो तो पोस्ट जेका है ना वा सडी, मतलब प्रोग्राम सडो कंप्लीट हले पयो, पर यो वा तो उते लाइव तवा के कमेंट्स ता नथा करे सको, को ऑप्शन वगैरह ता वटना है, पर यो वा तो प्रोग्राम ता चला पूरो आहे, अगर ता मतलब उधर चाहे तो पूरा प्रोग्राम बदी सको ता। सो ये मसला है, पता नहीं ये क्या है, तो इसको जरा हम सॉल्व करवाएंगे। और आप बस ऐसा कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं।

Nako! पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। किशोर भाई हमारे साथ ही कहते सलाम अदा स्मार्ट आयो आ अज थदो पियंदो सही आ हाजिर हाजिर जूस घुरायो था मेरा एक बार करना सिंड्रेला केड़ो जूस पियंदो अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हाथों पैरों और गर्दन पर लगाने से तो एक दिन में एक डब्बी खत्म हो जाएगी। डी स्किन क्रीम की फेस पर लगाना ठीक रहेगा। अरे बाबा पोयो थींदो न तव्हांजो चेहरो जेको आहे उहो अलॻि नज़र ईंदो ऐं तव्हांजी गर्दन तव्हांजा हथ पेर जेके अलॻि नज़र ईंदा। ऐं माण्हू चवंदा आहिनि सतरंगी छो थी विया आहियो, इन करे तव्हां हथनि पेरनि ते गर्दन ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो। कोन हिकु ॾींहं में ख़तमु थींदी, एॾी कंजूसी बि सुठी न आहे। ॾिठो हूंदो खोड़ सारा माण्हू सतरंगी हूंदा आहिनि, मुंहुं हिकिड़ो वरी हथ हिकिड़ा कंधु हिकिड़ो इहो सही न आहे बाबा, सही न आहे, पाण सां गदारी आहे। हाँ जी एतबार कर ही लेते, चलो क्या याद करो। वसीम अली हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। अनवर भाई कहते हैं कि उससे खोने से डरता था, बहुत रोने से डरता था, फिर एक दिन ये समझ आया कि रोया उनको जाता है बिछड़े जो मुकद्दर से, कि खोया उनको जाता है जो हासिल हो मयसर हो, जो दानस्ता बिछड़ जाए उसे रोया नहीं करते, जैसे पाया नहीं अब तक उसे खोया नहीं करते। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।

हाँ जी सही बात है, सब कुछ इग्नोर करो पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर ना ना ना ना ना ना ना, ये सही नहीं होगा। हाजिर जो हुक्म कर। बुआ जी ही कलाम तो बुधायो, मां दिसा थी मिली हो तो हलाए वठूं दा, ठीक है। आहत भाई कहते टॉपिक किसी चीज को देखने के लिए। ओके भाई, ओके ओके। नजीर भाई मैं सुन रही बलूचिस्तान से, भाईजान आपको भी वेलकम कहते हैं। दिया कहती है कि ऐसी गर्मी में बेस्टीज भी अचानक आ जाए तो खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि किचन में जाने के लिए 100 दफा सोचना पड़ता है। ऊपर से मस्के वो डिश तुम्हारे हाथ की, आए हाय। हाँ बाबा, ये मस्का जगह में ॾाढा आनंदियूं आहिनि, पर इहा मतलब मूंखे लॻंदो आहे ॾुख जी ॻाल्हि। या उनके चो अचो तो वो जेका डिश ताके वणदी है, जेका मुंजी फेवरेट आ, वो ठाई अट जा, बाकी ता बाहर आ घुराए वठो। बेकरी जिंदाबाद।

सिंड्रेला। ओ मेरी दर्दी दिलों मारी साथी, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, कैसी हैं? ठीक ठाक है, मजे में हैं, आपको वेलकम कहते हैं। नजीर भाई कहते हैं कि बेसुकूनी का असल सबब हमारी लामहदूद ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। जब इंसान की तमाम तमन्नाएं और ख्वाहिशात अल्लाह ताला के अहकाम और रजा के ताबे हो जाती हैं तो सुकून और इत्मीनान जो है ना वो हासिल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और चाचा कहते हैं कि किसने दी? भाई देने वाली बात तो थी नहीं ना, मैंने कहा मैंने अपने आप को गिफ्ट कर दी है, किसी और का इंतजार क्यों करे भला, कि वो आएंगी डायमंड रिंग देंगी। आए हाय, हम खुद को गिफ्ट कर देते हैं। और कर दी। यस

0: water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे। पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिंखे बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो। गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबलीअ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि। सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे। भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि कानूनी जवाज़ नाहे। कश्मीर पाकिस्तान जे शहर रग आहे ऐं रहंदो। कश्मीरियुनि जी सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआदो बि कंहिं मुल्क़ ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमुन लाइ आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। सऊदी अरब में शहरी इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान हिकु दिफ़ाई मुआदे तहत थियल फ़ौजी सरहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो। मके दिफ़ाई मुआदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जे 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो। नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबन हार्मुज खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी। 7 शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो। आबन हार्मुज जो कंट्रोल हिन वक़्तु बि ईरानी बहिरिया वटि आहे। पासदार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोवी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबन हार्मुज खोलाए न सघियो आहे। अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं ख़िते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे। इलाक़ाई सहकार खे मुयसरु बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में गेट वे जो किरदारु अदा करण लाइ तयारु आहे। आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे। पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ साथीअ जो किरदारु अदा करे वक़ार बुलंद कयो। पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो। पाकिस्तान ऐं कतर ख़िते में अमुन लाइ अञा बि किरदारु अदा करे रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ीअ जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे। पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई, अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे। पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश नाहे। सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे। औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुटो ज़रदारी शुरू कराई। बिरपो ख़ासि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे। सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे। जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त हुनखे बंदि कयो वेंदो। पाक बहिरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई वॾे मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती। ISPR मूजिबि पाक नेवी जे जहाज़नि हुने नेरमुक जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई। समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली। नेवल चीफ पारां अमले जी आला पेशावरानी सलाहियतनि जी साराह कई वई। पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रुपया आहे। सखर में डिस्ट्रिक्ट बार जो एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणीअ ते हमले ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट को भी वकील कोर्ट में पेश न थियो। अदालत ॿाहिरां एहतजाज बि कयो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त अदालत जे गेट आॾो रुकावटूं रखी हिकु जज ते हमिलो कयो वियो। पुलिस हिकु बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। टंडोलियार जे सुमरा कॉलोनीअ मां मासूम ॿार जो लाश मिलियो आहे। सुञाणप 7 सालनि जे दाऊद सुमरो जे नाले सां थी आहे। पुलिस मूजिबि ॿार कंहिं गाॾी जे टकर में फोत थियो आहे। नवकोट में मिठड़ाओ केनाल मां पाइप लाइन ज़रिए पाणी खणण ख़िलाफ़ आबादकारनि जो एहतजाज। पिथोरे समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि खे पाइप लाइन ज़रिए पाणी ॾियण वारे स्कीमनि ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। समय आबादकार रोड ते निकिरी आया। आबादकारनि चयो त पिथोरे शहर खे खाई शाख ज़रिए पाणी मिले थो। स्कीम खे रद्द कयूं था। नवाब शाह जे क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी जे शागिर्द आकिब आलमाणी जे क़तल केस जी ॿुधणी। जवाबदार अशफाक बिरोही अदालत में पेश। 4 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले। थारू शाह वासी शागिर्द आकिब आलमाणी खे नवाब शाह में ओधर जा ॾिनल पैसा ऐं मोबाइल फोन वापसि घुरण ते क़तल कयो वियो हो। हैदराबाद जे फुलेली वाह में नवाब शाह वासी हेस्को मुलाज़िम वेंझंदे ॿुॾी वियो। रेस्क्यू टीम वाके वारी हंधि पहुची परवेज़ अली जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। अफ्रीकी मुल्क कांगो में फ़ौजी जहाज किरी तबाह। 2 आफ़ीसरनि समेत 14 ॼणा अजल जो शिकार। कांगो जे फ़ौजी तर्जुमान चयो आहे त जहाज हादसे में फ़ौत थींदड़नि में फ़ौजी अदालत जो सरबराह ऑडिटर जनरल शामिल आहिनि। हादसे जा कारण मालूम करण लाइ जांच जारी आहे।
2: AI is powerful enough to end all of humanity?
3: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause 1 billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tool.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 अरब इंसाननि जे मौत जो सबब बणिजी सघे थी। बिल गेट्स AI जे ख़तरे खां दुनिया खे आगाह करे छॾियो। माइक्रोसॉफ्ट जे बानी बिल गेट्स जो चवणु आहे त AI जी हाणे वारी तेज़ रफ़्तार मुदाख़लत खां सवाइ वॾो इंसानी ख़तरो बणिजी सघे थी। ॾोहारी AI जो ग़लति इस्तेमालु करे सघनि था।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।

ट्राई कयनि पर तव्हांजी स्किन जेका हमेशह रुखी सुखी हूंदी आहे या तव्हांजी स्किन जेका आहे न उहा ईअं तव्हांखे महसूस कराईंदा बाबा इलाही जल्दी ऑयल निकिरी अचे थो चहिरे ते, तव्हां इन जी वजह सां घड़ी घड़ी तव्हां पंहिंजो फेस वॉश कंदा आहियो, त घड़ी घड़ी फेस वॉश करण खां थोरो अवॉइड कयो ऐं तव्हां बसि डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए करे ॾिसो। ऐं जॾहिं तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राए कंदा न, तव्हांजी स्किन ते जेको एक्स्ट्रा ऑयल हूंदो आहे उहो बि ख़तम थी वेंदो ऐं तव्हांजी स्किन हमेशह मॉइस्चराइज़ रहंदी ऐं तव्हां पाण महसूसु कंदा त बाक़ी वाह जी शइ इस्तेमालु करे रहिया आहियूं। जेको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे या बाबा इलाही प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, उहो डी स्किन फेस वॉश बि अगरि तव्हां ॾिसंदा त तव्हांखे महसूसु थींदो बाबा वाक़ई ही प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे। ऐं बिल्कुलु इहा चीज़ तव्हांखे मतिलबु हाणे ज़हन में ईंदी हूंदी त अगरि प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि त महांगा मिलंदा हूंदा, बिल्कुलु महांगा न आहिनि, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। सो तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश, मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलनि पिया बाबा। सो वञो ऐं वठी अचो, ट्राए करे ॾिसो, ट्राए करण में छा ई वञे थो भला। ट्राए कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी वाकई बाबा कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि सही आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी। ऐं तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो, शेयर कंदा कयो, छो त शेयरिंग इज़ केयरिंग हूंदी आहे। अच्छा, मूं तव्हांखां सवाल पुछो आहे त किस चीज़ को देखने के लिए उसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इहो तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा। ऐं गॾोगॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। ऐं हा, ॿी ॻाल्हि तव्हांखे नंबर ॿुधायां जेको तव्हां डायल करियो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल भी कराए सको था। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो था बाबा तव्हांखे डायल करणो आहे 0333-2738-4309-3734-84-909 ऐं ॿियो नंबर आहे 0312-5025-907-3125-970। ही नंबर डायल कयो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां इस्तेमालु कयो या अञा ताईं कोन कयो, न कयो त छो न कयो ऐं कयो त पोइ तव्हांखे रिज़ल्ट कहिड़ा मिलिया आहिनि। अच्छा, जेके बि सोणा सोणा भाइर भेनर असांखे ॿुधनि पिया, ही प्रोडक्ट तव्हां सभिनी जे लाइ आहिनि। सो इस्तेमालु करे मूंखे ज़रूरु ॿुधाइजो जे मूंखे ख़बर पए ऐं जॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा आहियो त भाॼी असांखे अहिड़ो रिज़ल्ट मिलियो आहे, एतिरो असांखे फ़ाइदो पहुतो आहे, त यकीन कयो मूंखे इलाही ख़ुशी थींदी आहे। सो तव्हां अगरि इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे लाज़मी ॿुधाईंदा कयो।

बहुत ही प्यारा गाना हम एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आप लोग मौजूद हैं जिस गाने की फरमाइश हमें जेन ने कर दी थी, तो जेन ये गाना हम सुनेंगे आप लोगों के साथ साथ। और दर्दे दिल कहती है कि अगर तकलीफ देने वालों को ये मालूम हो जाता कि हमारे दिलों में उनके लिए कितनी खैर है तो वो कभी ऐसा ना करते और वो फिर ज्यादा करते मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने खबर पहुंची हुई तो असाज दिल में उन्हें केतरो खेरा तो असा तकलीफ ॾींदा या चीज तां हमेशा याद रखंदा क्यों। कोई कोई भी न दुनिया में शायद कंहिंजो एहसास नाहे कंदो।

0: बात है भाई, ये बहुत ही प्यारा गाना है जो कि हम एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ अमानुल्लाह दल हमारे साथ मौजूद है। अमानुल्लाह भाई कहते हैं इट्स मी अमानुल्लाह फ्रॉम राजू खानानी। ओके, अगर मैं सही नहीं रीड करी तो माजरत करते हैं। ठीक हूँ, आप बताएं अमानुल्लाह भाई आप कैसे हैं? और अहद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक हो गया। और गुलाब जो गुल कहते हैं अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। हाँ के अलावा आहत भाई तहां गाने जी फरमाइश किया मैं दिसानी ताजी पसंद जो गानो भी हलाए बैठूं था। हिदायतुल्लाह कहते कि अदा बारात नहीं आई कल आनी थी लेकिन अब वो 4 तारीख को आएगी तो समझा ये ऐसा क्यों भला, ये तो इंडियन शादियों के जैसा सीन हो गया। चलें जी। और फहीम भाई कहते हैं कि
1: नाम था मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से सुन ले तेरी हर।
0: ऐसा लगते हैं कि पर्ची वयो शिकायत जो दफ्तर या फहीम सुधरी वयो आहे हुन मोट में मुर्गी फरमायो चरण जी शिकायत केर करे। आए हाय। अच्छा अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बुधायो जहानत चेक कजे सिद्रा जी प्रोग्राम में। टॉपिक मुझे ख्याल में आने तक बुद्धि बढ़ते हूँ। मुगल उमरानी भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम कहते हैं। और निदड़ी हमारे साथ ही कहती हैं शलावा है शलावा, निदड़ी इज बैक होता है चरी पगली बैक बैक। कहती है बचना है हसीनो निदा आ गई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बच रहे हम। और उनके अलावा दिया कहती है सिंड्रेला। हाँ जी निदड़ी कहती है कि बुखार को चकमा देकर आ गई मैं, बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। और कहती मासूमी का मौसमी का जूस, सही सही सही सही लिखा तो सही करो। और उनके अलावा ओके चाचा खालिद बहुत शुक्रिया आपका। और अनवर भाई कहते हैं कि कड़ी कड़ी अमां जो आवाज स्पीड में हूंदो आहे त ये लगंदो आहे प्रोग्राम रिकॉर्ड पयो लगे। रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी त इहो ई हूंदो आहे जेको हीअं मतलबु रोज कंदी आहियां। उहो ईअं करिणो त न पवंदो आहे मूंखे अलॻि सां रिकॉर्ड। इहो बि इहो ई प्रोग्राम हूंदो आहे जेको डेली कंदा आहियूं।

बिल्कुल अनवर भाई सही था, जो रंग जेको भी हुजे पर एक रंग हुजे। इन लाइ चवां थी त तव्हां सभु जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पंहिंजे चेहरे ते, गर्दन ते, हथनि पेरनि ते। जे तव्हांखे को ॾिसे त ईअं न चए त बाबा इहो वरी छा सतरंगी छो था घुमंदा वतो थी। तव्हां इस्तेमाल कयो बाबा जी स्किन ब्यूटी क्रीम, जेका तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सफ़ा भलो वी आई पी ऐं तव्हां लश पश थी वेंदा। अच्छा निदड़ी कहती है कि सलाम टू साइमा मीर, मैंने सुना उसने मुझे याद किया था उस दिन और उसको बोला अच्छा कहती है उसको बोलो अब मैं फिरोज की फैन नहीं हूँ। अरे भाई इतना जल्दी आपने पार्टी बदल ली, कहती अब आतिश की फैन हूँ। अब साइमा को कैसे पता कि आतिश कौन है।

0: हाँ जी हो हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा अली पोस्ट के लाके शेयर करो था वो कौन है
1: तो लिखा तो लिखा तभी रोई पवा थे तार कया तभी रोई पवा के ससुर सल्या तभी
0: अच्छा निजाम भट्टी कादरी भाई में सुन रहे हैं निजाम भट्टी कादरी भाई तहां जो मोबित वन प्रोग्राम बुधो पया और स्मार्टू कहते हैं कि अच्छा गानो मा दिसांती हलाई वठूं ता तवां जो और इन का अलावा गुलाब जो गुल कहते हैं हां बाबा डाडू दुखियो डाडू दुखियो

अच्छा किशोर भाई हिन खे तूं सिर्फ़ पाणी में पेन घुमाए ॾे जा मां लिखां छा पियो लिखजी अलाए छा वियो मां उहो ई ॾिसी करे हैरान थी वियमि त तव्हां वाकई इहो मो पताया मिड़ी वो जरा बात समझ नहीं आई थी। हजार भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई, और फरवा भी हमारे साथ नाजुदी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक मुखे समझ न आयो पर एतरो चवंदस तोखे दिसण लाए तो जड़ी नजर हुजन जरूरी है।

बस मजबूर ना हो जाए मां चवंदी आहे सब कुछ हो जाए बस इंसान मजबूर ना हो जाए मजबूरी जेका ना लाइ छा छा कराए छॾींदी आहे बिल्कुल जी अगर तव्हां बि ख़ूबसूरत थियण चाहियो था ख़ूबसूरत थियण तव्हांजी मजबूरी आहे या मजबूरी नाहे तभी तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती में सफ़ा इज़ाफ़ो आणे छॾींदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां चाहे मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा सुहिणा थी वञो

जी गुड मोमेंट थे बुथेगो थेबो का हबीबुल्ला थेबो भाई के तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम के वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाई आई तमाम वाली गाने जी फरमाइश कई मैं दिसानी ता जो गानो हलाए बैठू था न तवरी शाम वारो गानो यो फरमाइश करे ता शाम वारे प्रोग्राम में बुधना से अब्दुल्ला महर भाई हमें सुन रहे मीरपुर खास से कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहा हूं आपको सलाम सॉन्ग हुमेरा चन्ना का दिसानी भाऊ बिल्कुल ता जी पसंद हलायूं था आई बहुत शुक्रिया ऐसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए रसूलाबाद का आबिद हुसैन शबानी भाई वालेकुम अस्सलाम अदी अच्छा तमाम जवाब दिनो आए सही सही टॉपिक जो ओके हो गया जी चाचा खाले तमाम भी टॉपिक ते जवाब दिनो आए तमाम गानों भी प्लस में लिखी सडे हलोड़ी तरक्की।

अच्छा ही सॉन्ग असांगे डेडिकेट अच्छा मतलब फरमाइश की कयो डेडिकेट भी कयो आई प्लस में सो ये हमारे साथ है सलाम सिद्रा केड़ा हाल आहिन दुआ है हमेशा सलामत हो जो शो नाइस वॉइस नाइस सॉन्ग प्ले कर जो तू जो शहर डिसन मुझी मजबूरी मुमताज लाशारी डेडिकेट यू फ्रॉम योर लिसनर रोफी रोफी हमें सुन रहे हैं जी रोफी को वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया वैसे रोफी आप प्रोग्राम में मतलब कम कम शामिल क्यों होते हैं आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं तो आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है और ये हमारे साथ कहते हैं चाचा खालिद को सलाम मंजूर अली खास के लिए झंडो मरी खां मंजूर भाई तांजो मोबतुआन प्रोग्राम बुधो पया और ये मौजूद है हमारे साथ हबीबुला थेबू सॉन्ग बुधराय जो हाजिर भा सब्र त करे मुनवर मुगल भाई हमारे साथ कहते हैं मीरपुर खास से चाचा खालिद के लिए फैमिली पैक बनवा दो डी स्किन का 2.5 किलो वाला डब्बा हम भी लेंगे 2.5 किलो वाला डब्बा हलड़ी विशगाल में दम आए 2.5 किलो जो डब्बो हो जाए तो सब बस लगाइन फैमिली पैक हुए आई का टेंशन वैसे ये डिठो वने एडो वो पैक हों तो वही मानू चंदा बाबा हाँ असि नंढड़ी नंढड़ी क्रीमियों नंढा नंढा डब्बा टो इन कर नंढा नंढा डब्बा जो आसानी थे तवे तुम घर जो एक भाती वो पर्सनल लगाए पर्सनल एक वटी डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए बस वो लगाए ना ये सुना सुना रहा कोई भी कें क्रीम न खणे कोई भी कें फेस वॉश न खणे तुम सब वो सब लगा चाचे के चौं था बाबा चाचा तुम अलग से डब्बी वो या सो जो पैक ही ना फैमिली पैक तुम वो वी सो अलग से 2.5 किलो पैक जी जरूरत ही कोने का सो तुम इस्तेमाल कंदा रहो ही खूबसूरत हींदा रहो इते टाइम थे बाबा वठूं था नंडड़ा ब्रेक वो जल्दी मोटी चांदी तवांडे एकड़ी गाल बुधाई थी मोटी अच इते बैठा हो जुमा ओही मोटांदी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
3: This program is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty Cream. Hina mein maujood vitamin E beads aur jadid micro beads formula. Awaji skin ke banaye nikhri aur chamakdar. Sirf bindihan mein dark spots ke kare khatam. Aur diye kudrati asli glow. D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
6: GFM 90.8.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.9। तो तुम्हारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। वैसे जितने भी लोग इस्तेमाल कर चुके हैं उनका बहुत अच्छा सा रिस्पांस हमें मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई हम भी खूबसूरत हो जाएं, हम भी जरा अपने चेहरे को चमकाएं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को जो है ना वो सेफ रख सकता है, खूबसूरती का ख्याल रख सकता है, हमेशा के लिए हसीन और प्यारा प्यारा बन सकता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो कि आप लोग पहले से जानते हैं कि भाई हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये बाहर तो एक नाइट क्रीम है लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। और जनाब सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो कोई भी टेंशन की बात ही नहीं कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम हम लगाएंगे तो क्या कोई मसला तो नहीं हो सकता है, स्किन सेंसिटिव है, नहीं लगा पाते हैं, ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई भी चीजें अगर आपके जहन में है तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर ये तमाम चीजें जो है अपने जहन से आउट कीजिए, अपनी खूबसूरती को जरा निखारने दीजिए, खूबसूरती को जरा हाई हाई कीजिए और तमाम प्रॉब्लम्स को बाय बाय कीजिए। मर्द हजरात आयो, खवातीन आयो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सके तो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कोन थी आहे अञा ताईं, त बाबा छा था कयो तव्हां अवेलेबल छो नथा करायो? बिल्कुल जी, अवेलेबल करायो और उतां वञी आसानी सां तव्हां परचेज कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। बाबा साईं देर न कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश बि वठी अचो। ऐं खूबसूरती जे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज बाबा, तव्हां सभई लगाए सघो था, सभई खूबसूरत थी सघो था, सभिनी खे हक़ आहे खूबसूरत ॾेखारण जो। खूबसूरती जे मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइए और चमकते जाइए। हा ॻाल्हि बि विसरी वई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे सिर्फ़ 2 रातनि में रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट अथव। अगरि तव्हां चओ था त बाबा तेज़ी में कोई असांखे भलो प्रोडक्ट रिज़ल्ट ॾे, ऐं जॾहिं तेज़ी जे रिज़ल्ट जे चकरनि में तव्हां केमिकलनि वारा प्रोडक्ट अपने चेहरे ते इस्तेमालु कंदा आहियो त उन मां यकीननि तव्हांखे इलाही सारो नुक़सानु पहुचंदो आहे। पर जॾहिं तव्हां वटि कोई मेडिकेटेड फार्मूलो आहे ऐं उहो तव्हांखे जल्दी में रिज़ल्ट ॾे थो, रिज़ल्ट बि उहो जेको हमेशह तव्हांजे चेहरे ते बरक़रार हुजे, तव्हांजे घर में कोई शादियूं आहिनि या फिर तव्हांजो पंहिंजो शादियूं थियणियूं आहिनि त तव्हां शादी थियणी आहे त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न बाबा, हिन जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहे, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जी एडिशन थियल आहे। त इहे जेके चीज़ूं हूंदियूं आहिनि इहे महंगनि महंगनि फेशियल जे अंदरि एड थियल हूंदियूं आहिनि। जेके ख़वातीन मतिलबु पार्लर वारियूं मूंखे ॿुधंदियूं हूंदियूं उन्हनि खे बिल्कुलु ख़बर हूंदी त इहे वाइटमिन ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके हूंदा आहिनि उहे केतिरा इंपॉर्टेंट हूंदा आहिनि तव्हांजे चेहरे ते निखार ॾियण जे लाइ या तव्हांजी स्किन खे ब्राइट करण जे लाइ। सो तव्हांजे लाइ 2-in-1 फार्मूलो आहे। जेके पार्लर जूं अधियूं असांखे ॿुधनि पियूं या जेके पार्लर जूं छोकिरियूं असांखे ॿुधनि पियूं उहे बि बाबा पंहिंजे तव्हां कस्टमर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई करे सघो था, उन्हनि खे ॾस ॾेई सघो था, तव्हांखे एतिरो भलो मतिलबु हुनजो रिस्पॉन्स मिलंदो, तव्हां पाण ई चवंदा वाह साईं वाह तरक़ी आहे ॿियो छा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे त उहो बि लाज़मी वठिजो, उहो इग्नोर न कजो, उनखे इग्नोर न कयो बाबा। ऐं अगरि तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑलरेडी अवेलेबल आहे पर फेस वॉश कोन थो मिले त तव्हां नंबर ते राबितो करे फेस वॉश खे बि अवेलेबल कराए छॾियो, जे ॿई चीज़ूं मिलनि ऐं तव्हां वञो बसि परचेज करे अचो। ऐं हा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी निशानी आहे त बाबा हिन जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे, ऐं तव्हां नालो ॾिसी करे ऐं इहो फोटो ॾिसी करे पोइ तव्हां सही प्रोडक्ट परचेज कजो। सही प्रोडक्ट परचेज करे निकालो से होशियार रहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते रहिए।

हाँ जी मेला नसीब बन जाते हैं, यही डायल करे बैठो 03-1250-25907-12-312 पंजाह पंजवीह 970 बुड़ी टे एक ब पंज जीरो ब पंज नव बुड़ी सत विच में जीरो अची वो पर इग्नोर करो उनके बुड़ी लिख जो 033-2738-4309 बुड़ी 332 73 84 309 बुड़ी 3 ब 7 3 8 4 3 बुड़ी 9 ही नंबर साइन राबतो कयो पाजे करीबी जनरल स्टोर्स ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल करायो खूबसूरत सबुथियन बाबा ता जो पीछे रेजी वनो ता भी खूबसूरत थयो आई खूबसूरती जो दुनिया में कदम रखो आई चो यस असा भी इस्तेमाल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम

अच्छा अमानुल्लाह भाई, आपको जो भी डिटेल्स मतलब जाननी हो ना कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं या प्राइस क्या है या हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, आप उनको अपने सिटी का नाम बताइएगा। तो नंबर्स के ऊपर राता कीजिए, जो नंबर अभी आपको बताया उनके ऊपर राता कीजिए, आपको वो तमाम डिटेल जो है ना वो दे देंगे। तो आप जरूर नंबर्स के ऊपर राता कीजिएगा, ठीक है।

ॾाढो खूबसूरत गानो ही गानो वाकई खूबसूरत आहे मुख्तियार भाई जी आवाज़ में गानो मुख्तियार भाई भी ॾाढो सुठो इंसान आहे माशाल्लाह अल्लाह सां हिननि खे हयाती ॾे सिहत ॾे ऐं असांजो प्रोग्राम शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि बिल्कुल जी ऐं मुख्तियार भाई इलाही सारियूं तारीफ़ूं कंदो आहे अधी सिदरा मुख्तियार भाई तव्हांजी मोहबतूं ऐं तव्हां एतिरी सिक कुर्बई मोहबत ॾींदा आहियो सो ख़ुशि रहो ऐं हुन खां अलावा जेको आहे तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कजो अगरि प्रोग्राम ॿुधो पिया त वैसे ॿुधंदा आहिनि

अच्छा अहद भाई लिखते हैं कि मशहूर होने का शौक नहीं हमें, बस आप हमें जानते हैं इतना काफी है। हाओ सही था चो। और नदड़ी कहती है कि बस मैं ही सबका ख्याल करती हूँ इस दुनिया में। हाँ सही थी जय माँ भी हम और तुम। अच्छा स्मार्टू लिखते हैं कि तुम्हें अरे ये शायरी मत भजी भाई। एडवोकेट कामरान खान सारकी हमारे साथ कहते हेलो सिस्टर नाइस यू, थैंक यू वेरी मच एडवोकेट भाई साहब। और उनका अलावा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे शाम को चुप करके सुनने देना सॉन्ग, अभी तो चुप नहीं करोगी तो इस वजह से शाम का बोलो। हाँ हाँ शाम वाले प्रोग्रामों में तांगे फुल गाना बुधराइंदी है सोते भले फरमाइश करना गयो। और अमानुल्लाह भाई कहते हमारे शहर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करवाता हूँ। बिल्कुल जी अवेलेबल कराइए, जो नंबर आपको बताया उसके ऊपर लाजमी राब्ता कीजिएगा ठीक है। अच्छा सिया सिया वाले गाने जो सिख लगी था वह छा बला किशोर भाई हुकुम कयो हलाई।

अच्छा चौथा हिते फेक माण्हू एतिरा आहिनि समुझ नथो अचे त असल में आहे की असल सिर्फ़ मां आहियां. Yes, the one and only. I don't know how to enjoy the really in a cheese cake. भाई आप लगे हाथ पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें जो फेक लोग आ रहे हैं. हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी करते रहे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बहुत खूबसूरत और प्यारा भी बना देगा. तो ये जो आप फेक फेक बनकर आते हैं ना, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, आपकी खूबसूरती में इजाफा आ जाएगा. और खूबसूरत बनने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ खवातीन ही इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मर्द हजरात भी लगाइए, खवातीन भी लगाइए और खूबसूरती की दुनिया में छा जाइए. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी चीज है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जगह ही बाबा तवाजला मेडिकेटेड फार्मूलो है, यानी कि डॉक्टर्स मिली करे प्रोडक्ट है तैयार कयो आहे. त को भी टेंशन जी गाल कोने का, त ही प्रोडक्ट असां लगाए सघूं था या नथा लगाए सघूं. असां जी स्किन सेंसिटिव आहे त असांखे मतलब क्रीमू सूट न कंदियूं आहिनि, त तव्हां सभु लगाए सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम. नालो वठी तलब कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करो.

हां जी खाए अलावा तमा पोस्ट के लाके शेयर कयो कोन दर्दितल कहती है कि डी स्किन फेस वॉश लेकर आई हूं चंदा क्या बात चंदा की बात कैसे ना मानती मां सदको वना सोनी ता आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम ता पेरिया का इस्तेमाल कयो पया ई ना

क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्यारा गाना। और यहाँ पर टाइम की जरा किल्लत है तो आप लोगों के मैसेजेस जरा मैं खत्म कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी खालिद अहमद पिताफी। खालिद अहमद पिताफी भाई हमें सुन रहे हैं जी घोटकी से, आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया के साथ। मजर अली हमें सुन रहे हैं शहदाद कोट से, आपको भी वेलकम हो गया। और निजाम भट्टी कादरी भाई कहते हैं वाह नाइस शो, थैंक यू, जबरदस्त जियो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी अच्छी बोलती हैं आप। हाँ चाचा तव्हांजो गानो असां पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदा सी, ठीक है। और जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करती रहिए। और यहाँ पर स्मार्टू कहते हैं अच्छा सहिया, अच्छा सहिया है। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी हमारा नहीं अभी तक तो नहीं आया। और हिदायतुल्ला कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप भी, और नदड़ी आप भी, सब सब सब। अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अकरी चोदकी का अली गुलाबशर, नियाज मोहम्मद, इमरान अब्दुल बाकी, आई अब्दुल्ला माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम आए, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला भाई, तव्हांजो मोहबत वन प्रोग्राम की पसंद कयो पया। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो, दड़ी निजात सुनी आज रात। और ये जी हमने एक और गाना लगा लिया है, ये गाना होगा मंजूर सखिरानी की आवाज में, ये मतलब बस सुनिएगा, पता नहीं क्यों मुझे ये गाना थोड़ा अजीब लग रहा था, मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं। और इनके अलावा अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना चाहो था तो लाजमी कजो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल जरूर करायो। जी तुम यहाँ चीज आसान थी वे तो बस तुम वनो ही पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के परचेज करिए।

हिदायतुल्लाह मुझे नहीं पता, मैं देखती नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं। गवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुलरी का खालिक लाशारी शो तवा जो वीआईपी आए फरजाना परवीन मुझे हथ जो रुमाल प्ले कर जो मैं कोशिश क्या भा पर गानों थी सगियो शाम वाले प्रोग्राम में सुबाने बुधी वी। और ये मौजूदी बाजी सदरा क्या हाल है आपके शोवरी नाई से मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम चौवन कुमार खाले जुड़े जो अदील अबड़ो ओके। और कहते हैं जी बाजी सदरा आज तो बहुत हंस रही हो, क्या तनखा मिली है क्या? ग्रेट वॉइस है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम किशोर कुर्बान खास के लिए अजीज सोलंगी और असलम मेहर एंड एंड के बाद जो मैसेज गुमा पगार बाबा आखिरी महीने में कंखे मिली है असा के तो कौन मिली है। उनका अलावा ऐसे शो खालिद आलम खान हमारे साथ ही मोहम्मद आलम खान भा तुम मोहब्बत आन प्रोग्राम बुध पाया। और ये हमारे साथ ही बाजी सिद्रा आपका शो सुपर हिट है और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी सलाम खाले जुड़ी जो अदील अबड़ो चौवन कुमार अंकल गफूर आकिब लाशारी और आरजी गुलनाज प्लीज प्ले शमन शमन बुधी बठू था। और उनका अलावा कहते बाजी सिद्रा लोग टाइम के बाद आपका शो लॉन्ग टाइम के बाद आपका शो सुन रहा हूँ एंट्री कबूल करना मीरपुर खास का उम्मीद अली लाशारी भाई सलाम डिनोए अक्सा यास्मीन एंड मी सो थैंक यू प्यारे भाई। और गोट गाजी खान बुर्दी बलोच खां अली बुर्दी बलोच अरबेलो शकील अहमद जाकिर अली बुर्दी बलोच अरबाब अली मोहम्मद कबूल वकील अहमद कहते हैं असां खां पोए तां जो मैसेज जिको ना भाव वो थोड़ो मिसिंग पार्ट थी वयो है सो मोहब्बतूं आहिनि प्यारे भाउ जो प्रोग्राम बुधो पिया आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाज़मी कजो अगर नथा कयो त करे वेठो अगर कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो। और ये मौजूद है कुंज अस्सलाम वालेकुम एफएम रेडियो की कुंज खुश रहो हमेशा कुंज जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो सुभाणे ॿुधंदासीं हाने मोकल जो टाइम थियो आहे न तो फरमाशन के थोड़ो स्टॉप लगायो हिदायतुल्ला मैंने तभी बोला थोड़ा सा अजीब लगा ओके सो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपको नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उनके ऊपर रब्ता जरूर कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएंगे चाहे आप किसी भी गांव में रहते हैं किसी भी सिटी से ताल्लुक है आपका बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराते रहिए। और जी अब्दुल जी केसर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत वरी तौर से मुझे मुलाकात जेका वो थे पई पंज बजे वाले प्रोग्राम में सो पंज बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करना ही पांजो ओ हेडो सरो ख्याल रखना इते का गलती थी हो जे तो माजरत कहूं था जो फीडबैक रही जी वयो आपको गानो शानो रही जी वयो है तो माजरत कहूं था बाबा मोकलानी ना है सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कंहिं ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे. पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिं बि कोशिश खे जंगी क़दम सम्झो वेंदो. गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबलीअ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि, विरहाईंदियूं न आहिनि. सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे. भारत पारां सिंतास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ न आहे. कश्मीर पाकिस्तान जी शइ रग आहे ऐं रहंदो. कश्मीरियुनि जे सियासी ऐं सिफारती हिमायत जारी रखी वेंदी. पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्की जो दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमुन लाइ आहे. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात. पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़. सऊदी अरब में शहरी इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई. सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मके दिफ़ाई मुआहिदे तय थियल फ़ौजी सरबराहन जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो. मके दिफ़ाई मुआहिदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो. नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबन हर्मुज़ खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो. तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी. 7 शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो. आबन हर्मुज़ जो कंट्रोल हिन वक़्तु बि ईरानी बहिरिया वटि आहे. फ़ाज़ाल इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोबी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबन हर्मुज़ खोलाए न सघी आहे. अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी. अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं ख़िते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे. इलाक़ाई सहकार खे मुयसर बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो. न्यूयॉर्क में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में गेटवे जो किरदारु अदा करण लाइ तयारु आहे. आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे. पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ सालसीअ जो किरदारु अदा करे वक़ार बुलंद कयो. पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो. पाकिस्तान ऐं कतर ख़िते में अमुन लाइ अञा बे किरदारु अदा करे रहिया आहिनि. दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई, हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई. अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे. पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश. सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे. औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुटो ज़रदारी शुरू कराई. मीरपुर ख़ास में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे. सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे. जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त उनखे बंदि कयो वेंदो. बलूचिस्तान जे ज़िले दुके में रोड तामीर कंदड़ कंपनी जे कैंप ते दहशतगर्दन जो हमिलो. फायरिंग जी ॾेवट दौरान हिकु सिक्योरिटी गार्ड शहीद थी वियो. हिकु जहिड़ो सख़्त ज़ख़्मी थी पियो आहे. दहशतगर्द 18 पोरेतनि खे अगवा करे विया आहिनि. सिक्योरिटी फोर्सिस तर्फ़ां मुगवी पोरेतनि जी बाज़ियाबी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे. पाक बेरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई. वॾी मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती. ISPR मूजिबि पाक नेवी जे जहाज़नि हुन यरमुक जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई. समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली. नेवल चीफ पारां अमले जे आला पेशावरनि सलाहियतनि जी साराह कई. पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रुपया आहे. सखर में डिस्ट्रिक्ट बार जो एडिशनल सेशन जज जावेद मीराणी ते हमले खिलाफ अदालती कार्रवाई जो बायकाट को भी वकील कोर्ट में पेश न थे अदालत बाहरा एहतजाज भी कयो वयो वकीलन जो चवण है अदालत जे गेट आडो रुकावटू रखी एक जज ते हमलो कयो वयो पुलिस एक भी जवाबदार के गिरफ्तार न करे सकी है। टंडोलियार जे सुमरा कॉलोनी में मासूम बार जो लाश हथायो है सुजाणप 7 सालन जे दाऊद सुमरो जे नाले सा थी है पुलिस मूजिब बार कें गाड़ी जे टक्कर में फोत थियो है। नओ कोट में मिठड़ाओ केनाल मां पाइपलाइन जरिए पानी खनन खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज पिथोरी समेत मुख्तलिफ़ शहरन के पाइपलाइन जरिए पानी दियण वारे स्कीमन खिलाफ धरणो कयो वियो आहे। सवें आबादगार रोड ते निकिरी आया आहिनि। आबादगारन चयो आहे त पिथोरी शहर खे खाई शाख ज़रिए पाणी मिले थो स्कीम खे रद्द कयूं था। नवाब शाह जे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी जे शागिर्द आकिब आलमाणी जे कतल केस जी बुधणी जवाबदार अशफाक गुरोई अदालत में पेश 4 ॾींहनि जी रिमांड ते पुलिस हवाले कयो वियो आहे। ठारू शाह वासी शागिर्द आकिब आलमाणी खे नवाब शाह में ओधर जा ॾिनल पैसा ऐं मोबाइल फोन वापसि घुरण ते कतल कयो वियो हो। नवाब शाह में जूनियर साइंस टीचर जे टेस्ट में 40 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि जो एहतजाज नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो उम्मीदवारनि चयो आहे त जूनियर साइंस टीचर जे टेस्ट इंताई ॾुखी हुई नोटिस वठी 40% मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि खे ऑफर आर्डर जारी कया वञनि। दादू में सिहत खाते जे मुलाज़िमनि जो वधायल पघार न मिलण खिलाफ़ एहतजाज मुलाज़िमनि चयो त हुकूमत पारां वधायल 7% पघारूं गुज़िरियल 3 महीननि खां जारी नाहिनि कयूं वयूं। बजट बुक मां संदन पोस्टूं बि ख़तम कयूं वयूं आहिनि। मुलाज़िमनि जा मसला हल कया वञनि। मेहड़ में सियासी समाजी धुरन जो बुनियादी मसलन के हल लाइ एहतजाज सियासी समाजी धुरन जा दुआ चौक का घंटाघर चौक ताईं रैली कढ़ी अगवाणन चयो त मेहड़ में गंदगी जो आज़ार आहे रोड रस्ता तबाह आहिनि पीअण जो साफ पाणी नाहे मसला हल न कया विया त एहतजाज जारी रहंदो। संडो गुलाम हैदर जे मातली रोड ते वापारीअ खां फुर दौरान शहरीन फोरूअ खे पकड़े वरितो। वापारी माजिद मेमण खां ॿिनि जवाबदारनि रक़म फुर करण जी कोशिश कई। शहरीन हिकु फोरू खे सोगो करे वरितो ॿियो जवाबदार फरार थियण में कामयाब थी वियो। फोरू खे मारकुट बाद पुलिस हवाले कयो। अफ्रीकी मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह थी वियो ॿिनि आफिसरनि समेत 14 ॼणा अजल जो शिकार। कांगो जे फौजी तर्जुमान चयो आहे त जहाज हादसे में फौत थींदड़नि में फौजी अदालत जो सरबराह ऐं ऑडिटर जनरल शामिल आहिनि। हादसे जा कारण मालूम करण लाइ जांच जारी आहे। थाईलैंड जे शहर बैंकॉक में बरसातनि तबाही मचाए छॾी। ॿोड़ वारी सूरतहाल रोडनि रस्तनि ते पाणी बीठल रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
2: AI is powerful enough to end all of humanity?
3: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause 1 billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tool.
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु अरब इंसाननि जे मौत जो सबबु बणिजी सघे थी। बिल गेट्स एआई जे ख़तरे खां दुनिया खे आगाह करे छॾियो। माइक्रोसॉफ्ट जे बानी बिल गेट्स जो चवणु आहे त एआई जे हाणे वारी तेज़ रफ़्तार मुदाख़लत खां सवाइ वॾो इंसानी ख़तरो बणिजी सघे थी। ॾोहारी एआई जो ग़लति इस्तेमालु करे सघनि था।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold-based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: water must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
1: भारत कहें ग़लतफ़हमीअ जो शिकार न रहे पाकिस्तान जे हिसे जो पाणी रोकण या रुख मोड़ण वारे कंहिं बि कोशिश खे जंगी कदम सम्झो वेंदो गडि॒यल क़ौमनि जे जनरल असेंबलीअ खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त नदियूं क़ौमनि जी उञ उझाईंदियूं आहिनि विरहाईंदियूं न आहिनि सिंध दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर ख़िते लाइ ज़िंदगी जी ज़मानत आहे भारत पारां सिंध तास मुआदे खे हिकु तरफ़ो मुअतल रखण वारे फ़ैसिले जो को बि क़ानूनी जवाज़ नाहे कश्मीर पाकिस्तान जी शहर रग आहे ऐं रहंदो कश्मीरनि जे सियासी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखी वेंदी पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो बि कंहिं मुल्क ख़िलाफ़ न पर ख़िते जे अमुन लाइ आहे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां सऊदी अरब जे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान जी मुलाक़ात पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब विच में दिफ़ाई सहकार वधाइण वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ सऊदी अरब में शहरी इक़्तिसादी हंधनि ते हमलनि बाबति बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई सऊदी दिफ़ा वारे वज़ीर ख़ालिद बिन सलमान चयो आहे त मुलाक़ात दौरान मके दिफ़ाई मुआहिदे तय थियल फ़ौजी सरबराहनि जी गॾिजाणीअ जो बि जाइज़ो वरितो वियो मके दिफ़ाई मुआहिदे खे अस्करी सहकार में तब्दील करण जो अज़म वरिजायो वियो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जी 7 ॾींहनि वारी जंग बंदीअ जी तजवीज़ रद्द करे छॾी अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त डोनाल्ड ट्रंप खे पक आहे त तेहरान संदसि मुतालबा तस्लीम न कंदो नवंबर में थींदड़ विच मुदे वारनि चूंडनि बाद ॿीहर ईरान ते हमिलो करे सघे थो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर आबना हर्मुज खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो तस्वीर ॿीहर समाजी वेबसाइट ते जारी करे छॾी 7 शर्त पूरा थियण ताईं अमेरिका खे सज़ा ॾियण जो सिलसिलो जारी रहंदो आबना हर्मुज़ जो कंट्रोल हिन वक़्तु बि ईरानी बहिरिया वटि आहे पाज़ार इनकलाब जे तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोवी चयो आहे त अमेरिका कुझु कलाकनि लाइ बि आबना हर्मुज़ खोलाए न सघी आहे अमेरिका जे हथियार फिटा करण वारी ख़्वाहिश पूरी न थींदी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं ख़िते में अमुन ऐं तरक़ी मुमकिन नाहे इलाक़ाई सहकार खे मुयसरु बणाइण लाइ ॻाल्हियुनि खां अमली क़दम तरफ़ वधणो पवंदो न्यूयॉर्क में तक़रीब खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में गेट वे जो किरदार अदा करण लाइ तयारु आहे आलमी अमुन लाइ बि पुरज़म आहे पाकिस्तान तकरारनि जे हल लाइ सालसीअ जो किरदारु अदा करे वक़ार बुलंद कयो पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु बीठल रहंदो पाकिस्तान ऐं क़तर ख़िते में अमुन लाइ अञा बे किरदारु अदा करे रहिया आहिनि दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गाननि जे 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई आहे पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न ॾिनी पई वञे औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुटो ज़रदारी शुरू कराई मीरपुर ख़ासि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरेतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदा त उनखे बंदि कयो वेंदो बलोचिस्तान जे ज़िले दुके में रोड तामीर कंदड़ कंपनी जे कैंप ते दहशतगर्दनि जो हमिलो फायरिंग जी ॾे वठि दौरान हिकु सिक्योरिटी गार्ड शहीद थी वियो हिकु जहिड़ो सख़्त ज़ख़्मी थी पियो आहे दहशतगर्द 18 पोरेतनि खे अगवा करे विया आहिनि सिक्योरिटी फोर्सिस तर्फ़ां मुगवी पोरेतनि जी बाज़ियाबी लाइ सर्च ऑपरेशन जारी आहे पाक बैरिया जे अरबी समुंड में कार्रवाई वॾी मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती ISPR मूजिब पाक नेवी जे जहाज़नि हुन यरमुख जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुजन खाननि में लिकायल मंशियात मिली नेवल चीफ पारां अमले जे आला पेशावरनि सलाहियतनि जी साराह कई पकड़ियल मंशियात जे आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रुपया आहे सखर में डिस्ट्रिक्ट बार जो एडिशनल सेशन जज जावेद मीरानी ते हमले खिलाफ अदालती कार्रवाई जो बायकाट को भी वकील कोर्ट में पेश न थे अदालत बाहरा एहतजाज भी कयो वयो वकीलन जो चवण है अदालत जे गेट आडो रुकावटू रखी एक जज ते हमलो कयो वयो पुलिस एक भी जवाबदार के गिरफ्तार न करे सकी है। टंडो अलियार के सुमरा कॉलोनी में मासूम बार जो लाश हथायो है। सुजाणप 7 साल के दाऊद सुमरो के नाले से थी है। पुलिस मूजिब बार कें गाड़ी के टक्कर में फोत थो है। नओ कोट में मिठड़ाओ केनाल में पाइपलाइन जरिए पानी खणण खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज। पिथोरी समेत मुख्तलिफ शहरन के पाइपलाइन जरिए पानी देण वारे स्कीमन खिलाफ धरणो कयो वियो आहे। समय आबादगार रोड ते निकरी आया आहिनि। आबादगारन चयो आहे त पिथोरी शहर के खाई शाख ज़रिए पाणी मिले थो, स्कीम खे रद्द कयूं था। नवाब शाह के कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के शागिर्द आकिब आलमानी के कत्ल केस की बुधनी जवाबदार अशफाक गुरोई अदालत में पेश। 4 दिन की रिमांड से पुलिस हवाले कियो है। ठारू शाह वासी शागिर्द आकिब आलमानी के नवाब शाह में ओधर जा डिनल पैसा ए मोबाइल फोन वापस घुरण से कत्ल कियो हो। नवाब शाह में जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट में 40 मार्कू खणंदड़ उम्मीदवार जो एहतजाज। नौकरी डेण जो मुतालबो उम्मीदवार जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट चिंताई लुखी हुई। नोटिस वी 40 सैकड़ों मार्कू खणंदड़ उम्मीदवार के ऑफर आर्डर जारी कया वन।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GAFM 90.8।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

चक्कर में बिन भेनरन से मुबैना ज्यादती अखवा की कोशिश मुतासर भेनरन जो एहतजाज सब्जी मंडी की रवासण श्रीदेवी ए राजकुमारी जो एहतजाज श्रीदेवी बागड़ी चया है तैयब रिद वे अरसे का दोस्ती लाए तंग कंदो हो जवाबदार एक साथी से गड़ी ज्यादती की कोशिश कई रड़ियन भेण राजकुमारी उत पौती तो जवाबदार उन भी ज्यादती अखवा की कोशिश कई जवाबदार तैयब के पकड़े पुलिस हवा है हाँ धमकियों मिली रही तो नोटिस वी तहफुज फराम कर

0: अफ्रीक मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह, बिन ऑफिसर समेत 14 जणा अचल जो शिकार। कांगो के फौजी तर्जुमान जहाज हादसे में फौत थींदड़ में फौजी अदालत जो सरबराह ऑडिटर जनरल शामिल हैं। हादसे का कारण मालूम करण लाए जांच जारी है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बरसात तबाही मचाए छी, बोड वारी सूरत हाल, रोड रस्तन ते पानी बीठल, रवासी घर ताई महदूद थी व्या।
1: AI is powerful enough to end all of humanity?
2: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tool.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अरब इंसानों की मौत जो सबब बनी सके थी। बिल गेट्स एआई के खतरे का दुनिया के आगाह कर छो। माइक्रोसॉफ्ट के पानी बिल गेट्स जो चवण है एआई की हाने वारी तेज रफ्तार मुदाखलत का सिवाय वो इंसानी खतरो बनी सके थी। दुहारियन एआई जो गलत इस्तेमाल कर सकन था।
3: सोलर बैटरी ते
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है।
1: या कोई पोएट्री उन्हें डेडिकेट करवानी तो वो आप लिख कर मुझे सेंड कर सकते हैं उनके नाम के साथ, अपने शहर का नाम लिखना मत दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, पहले तो हम एक अच्छे से ट्रैक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हम एक बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर भी, कि आज का टॉपिक ही हमारा कुछ ऐसा है। और देखें, टाइम का पता नहीं चलता कहाँ 5 बजे थे और कहाँ अब 5:20 PM हो चुके हैं, मतलब 5:20

सिर्फ कानों को नहीं सीधा हमारे दिल पर लगती हैं या दिल को सुनाई देती हैं। जहां अल्फाज दिल पर लगते हैं ना, वो आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो आज इसी रिश्ते को जोड़ने में आपके साथ आई हूँ। तो जी आज हम एक चीज बात हुई, क्योंकि अब नेक्स्ट जब मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करूँगी तो वो अक्टूबर होगा। तो जाहिर सी बात है, अब सितंबर जा रहा है, अक्टूबर दरवाजे पे खड़ा है। सितंबर जा रहा है, अक्टूबर दरवाजे पे खड़ा है। मौसम बदल रहे हैं, हवाएं बदल रही हैं, शामें उदास हो रही हैं। ऐसे ही इसी बदलते मौसम पर आज की एक

जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ना कि मौसम बदलते मौसम के साथ इंसान बदलता है, कहीं कहीं कभी कभी उसकी सोचें बदल जाती हैं, तो खुद को भी बदलें। तो कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें, कभी कभी खुद को भी खिजा का मौसम बना लिया करें और अपने अंदर से हर इस चीज़ को झड़ने दें जो आपको तकलीफ देती है।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो.
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम. यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। जी एफ एम का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
1: GA FM 88
2: सिंध की आवाज़।

मतलब मैंने सही पढ़ा था मात आज फुल मजे में आओ। चलिए आप लोग ऐसे बताते रहा करें मुझे सॉन्ग और मैं प्ले करती रहा करूँ। यही तो है, लाइफ एंजॉय करें मजे।

0: आप लोग ब्रेक था, ब्रेक के बाद मैंने एक सॉन्ग प्ले किया था माँ तो मजे में अभी, बिल्कुल मैंने सही पढ़ा था सिंधी थी तो मुझे भी आती है, पढ़ लेती हूँ समझ भी लेती हूँ, समटाइम थोड़े वर्ड मुश्किल होते हैं जो नहीं कर पाती। अच्छा जी जनाब, इस वक्त टाइम हो चुका है 5:59 PM, यानी बस अब एक मिनट रहता है 6 बजने में, मतलब एक मिनट भी क्या, बस लम्हे रहते हैं 6 PM हो जाएगा 6 बजे। 6 बजे मैं लूंगी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और साथ में न्यूज, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ आवाज़ का रिश्ता प्रोग्राम को, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, तो बहुत सी बातें होती रहेंगी, एक घंटा ऐसे गुजरा पता भी नहीं चला आप लोगों से, बस हमारे पास 7 बजे का टाइम रहता है और जो मुझे सॉन्ग्स के
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

0: सखर में बिन भेनरुन सा मुबैना ज्यादती अगवा की कोशिश मुतासिर भेनरुन जो एहतजाज सब्जी मंडी के रवासिण श्री देवी राजकुमारी जो एहतजाज श्री देवी बागड़ी है ते ब्रिंद वे अरसे का दोस्ती लाए तंग कंद हो जवाबदार एक साथी से गड़ी ज्यादती की कोशिश कई रड़न ते भेन राजकुमारी उते पहुंती तो जवाबदार उन भी ज्यादती अगवा की कोशिश कई है जवाबदार तेब के पकड़े पुलिस हवाले वो है तो हाँ धमकियों मिली रही है नोटिस वी तहफुज फराम किया वे डाहली में डाची से तशद कर अखियों कदन वाले केस के छाछरों की अदालत में बुधनी पोरे त अदालती हुकूमत के मुतासर डाची के अदालत कहे आयो अदालत केस में बिन शाहिदन जा बयान कलमबंद कर वरता केस में जवाबदार हमजो मुख्तियार रोशन मुमताज अख्तर रिंद समेत छियन जणन के नामजद कर वो हो अफ्रीकी मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह बिन ऑफिसर समेत 14 जणा अजल जो शिकार कांगो के फौजी तर्जुमान है तो जहाज हादसे में फौत में फौजी अदालत जो सरबराह ऑडिटर जनरल भी शामिल हैं हादसे जा कारण मालूम करने लाए जांच जारी है थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बरसातुन तबाही मचाए छी बोड वाली सूरत हाल रोडन रस्तन ते पानी बीठल रवासी घर ताई महदूद थी वया
1: AI is powerful enough to end all of humanity?
2: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tool.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अरब इंसानन जी मौत जो सबब बनजी सके थी बिल गेट्स एआई जे खतरे खान दुनिया के आगाह करे छियो माइक्रोसॉफ्ट जे बानी बिल गेट्स जो चवण आहे त एआई जी हाने वारी तेज रफ्तार मदाखलत खान सवाए वडो इंसानी खतरो बनजी सके थी डोहारन एआई जो गलत इस्तेमाल करे सकन था
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

जी जनाब, आवाज के रिश्ते में आप लोग सुन रहे थे शमन मेराली की आवाज। इसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं आवाज के रिश्ते में, और कुछ कमेंट्स हैं वो शामिल करते हैं, अपने लिसनर्स को भी सुनने वाले चाहने वालों को भी शामिल करना जो इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आते हैं। साथ साथ मैंने इसी ब्रेक में चाय भी पी ली, और यकीन करते हैं कि आप लोगों ने भी चाय इंजॉय की होगी, रखी होगी अपने साथ ही। अच्छा जी, हमें हमारे लिसनर्स कहते हैं कि फौजिया सुमरों का सॉन्ग प्ले कर दें। तो जी बिल्कुल, मैं सॉन्ग तो प्ले कर दूं, पर आप मुझे सॉन्ग बता दिया करें। अब मैं अपनी मर्जी से कर दूंगी, वो आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे प्लीज सॉन्ग के नाम लिखकर सेंड किया करें। इसके साथ ही हमारे साथ हैं हमारे पहले भी लिसनर्स हैं, मुझे मेरे लिसनर्स याद

बट जा रहा है अक्टूबर दरवाजे पे खड़ा है, तो जो सितंबर में हो गया, जो गलतियां जो भी हो गया, चलो उन्हें इग्नोर करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करो लाइफ में, बहुत ज़रूरी होता है। जब मूव ऑन करोगे तो आगे बढ़ोगे ना, ये थोड़ी कि आप दूसरों के आसरे पर बैठे रहो, क्योंकि कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं देने आएगा, आपको खुद ही सब कुछ करना है, कोई मदद नहीं करता। तो बिल्कुल, और अगर मैं हंस रही हूँ तो आप लोगों पर नहीं हंस रही, मैं किसी और बात पर हंस रही हूँ। अच्छा जी, तो ये एक बात कहूँगी कि खिजा अपने अंदर भी थोड़ा सा खिजा का मौसम ले आए, थोड़े से अपने अंदर के दर्द को, तकलीफ को झाड़ लो, ख़त्म कर लो, दासियों को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि खिजा का मौसम है, दरख्त भी उस पत्तों को झाड़ देता है जिसे पता होता है दरख्त भी कि बेकार है, हालांकि वो उसी दरख्त पर पत्ते फूल पौधे उगते हैं, उसी के जरिए वो आगे बढ़ते हैं, उसी से उनकी खूबसूरती, लेकिन जब वो सूख जाते हैं दरख्त भी उनको फेंक देता है, उनको नहीं रखता। तो खिजा के मौसम की तरह अपने अंदर से भी इन चीज़ों को झाड़ दो, क्योंकि तन्हाई भी जो है ना, अगर आप देखें तो तन्हाई भी खिजा के पत्तों की तरह है, जितना पकड़ के रखेंगे इतनी ही तकलीफें देंगे, छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह आने वाला कल आपके लिए बेहतर और बहुत सी खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि डूबता सूरज भी तो हमें यही बताता है ना, कल मैं फिर आऊँगा, किरण उम्मीद की किरण देता है। तो इसी बात पर एक और अच्छा सा जो सॉन्ग है वो मैं प्ले करने जा रही हूँ, तो जी मुझे उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय करेंगे मेरे साथ ही। सुन यारा सुन यारा, जी बिल्कुल मैंने प्ले कर दिया है, मेरे साथ आप लोग इसको इंजॉय करें। सुन यारा जो ड्रामा है वो इस बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, इसका सॉन्ग भी बड़ा अच्छा है, मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे। ये आवाज़ के रिश्ते में एक और खूबसूरती आवाज़ मैंने शामिल

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पिण थींदा आहिनि एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबितो 07115635642 आई 03108166111
4: 44 सालन जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम्योपैथिक क्लिनिक होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद 44 सालन जी वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन गैस बदहजमी तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर बे औलादी वारन जो किरण गंजपण फॉलेज खारिश ऐं बियन मुख़्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440
1: हेल्थ इज वेल्थ जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03-00-93-12-700
5: मोरो
6: नौशहरो
5: मीरपुर खास
6: लाड़काना
5: सखर
6: गूंज रही है हर जगह पर
5: सिंध की आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर केटी. अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: उहा शइ आहे जेकी हिकिड़ी वाइफ सीक कंदी आहे, वठंदी आहे हस्बैंड खां थ्रू द कोर्ट, के आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ माई हस्बैंड फर्दर मोर. कुझु कंडीशन्स, कुझु हालात उन में अहिड़ा क्रिएट थींदा आहिनि जंहिंजे करे जेकी रिलेशनशिप्स आहिनि उहे टॉक्सिक थी वेंदा आहिनि. उन टॉक्सिक रिलेशन्स खां बचण जे लाइ वुमेन गेट्स सेपरेशन थ्रू द कोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड. ऐं तलाक डाइवोर्स बि चवंदा आहियूं, तलाक बि चवंदा आहियूं. इट इज़ अ बेसिकली काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंस या सोशल सेपरेशन बाय द हस्बैंड टू कीप हिज़ वाइफ अवे, के उन रिलेशन्स खे वधीक अञा ज़हरीलो करण खां बहितर आहे त माण्हू डिस्टेंस क्रिएट करे छॾे ऐं घर वारी खे तलाक ॾेई छॾे. मतिलबु बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ सेपरेशन. हुते सिर्फ़ु वुमेन थ्रू कोर्ट वठे थी, हिते मुड़ुस खे डिस्क्रिशनरी आहे की पंहिंजे हस्बैंड खे कंहिं बि सिचुएशन में अगरि ॾिसे थो वर्स्ट सिचुएशन आहे त पंहिंजे घर वारी खे तलाक ॾेई सघे थो.
1: ठीकु आहे सर, टॉपिक ते पाण अचूं पिया, डिस्कस कयूं पिया. अवां ॾिठो अवांजी प्रैक्टिस आहे 10 सालनि खां अची लॉ में.
0: थोरो मां एड कंदुमि हिन में, छोकी पाण खे हाणे 1.5 साल थी विया,
1: बल्कि
0: 10 या 11
1: डाइवोर्स थी वञे या खुला थी वञे, छा वजूहात हूंदियूं आहिनि हिन पुठियां?
0: बाबा, देयर इज़ मेनी काइंड ऑफ डिफरेंसिस दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिचुएशंस क्रिएट थिए.
1: जी मां शुरू में बि तव्हांखे चई त हस्बैंड जा ऐं वाइफ जा जेके अंदरि राइट्स आहिनि, अक्सर हस्बैंड वाइफ जेके आहिनि हिननि खां अनअवेयर हूंदा आहिनि. ठीकु आहे, ऐं जी तव्हां ॻाल्हि कई त इलाही माण्हुनि खे ख़बर आहे तलाक छा आहे, पर काफ़ी खे इहो ख़बर न आहे त डिफरेंस छा आहे, खुला में छा आहे, डाइवोर्स में छा आहे डिफरेंस. त असां चाहींदासीं अॼु जे प्रोग्राम में स्पेशली असांजा उहे व्यूअर्स फ़ाइदो वठनि ऐं बेसिक राइट्स जे बारे में ख़बर पवनि, ऐं तव्हां जेको रूट कॉज बि असांखे ॿुधायो त डाइवोर्स जे पुठियां या खुला जे पुठियां कहिड़ो रूट कॉज आहे जंहिं वजह सां जेको आहे इहो रेशियो वधंदो पियो वञे.
0: ॾिसो, पहिरियों त मां ईअं चवां त के असां नंढे हूंदे खां ॿुधंदा आहियूं त जेके रिश्ता आसमान में ठहंदा आहिनि उहे सेलिब्रेट हिते थींदा आहिनि वॾी मुहबत सां, प्यार सां, घोट कुंवार, वरी ॿ फैमिलीज़ जो पाण में मिलणु, वरी उन्हनि जी हिकिड़ी प्यार ऐं मुहबत, ऑल ऑफ सडन कुझु अहिड़ा एलिमेंट्स क्रिएट थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे जेको आहे रिलेशन सोर थी वेंदा आहिनि. उन रिलेशन मां मिठास ख़तमु थी वेंदी आहे. जॾहिं मिठास ख़तमु थींदी आहे त पोइ रिलेशन सेपरेशन ते हलिया वेंदा
1: आहिनि.
0: अगरि फैमिली शादी थियण खां पोइ हस्बैंड ऐं वाइफ जा हिक ॿिए जे मथां म्यूचुअल राइट्स आहिनि, जंहिंजे करे ॾिसो न उनखे असां छा चयूं था, बेटर हाफ. औरत खे बेटर हाफ चयो वियो आहे ऐं मुड़ुस खे उनजो निगेबान, प्रोटेक्टर ऐं गार्डियन चयो वियो आहे. ठीक नेचुरल गार्डियन मां बि हिकिड़ो लफ़्ज़ अचे थो पियो, त माना हस्बैंड बि पंहिंजी औरत जो नेचुरल गार्डियन, पंहिंजी घरवारी जो नेचुरल गार्डियन आहे. हाणे औरत जा छा हक़ आहिनि पंहिंजे हस्बैंड जे मथां, के उहो उनखे सेफ्टी ॾींदो, उनजो ख़्यालु रखंदो, अगरि उनजी एजुकेशन न आहे त एजुकेशन पूरी कराईंदो, उनखे मेंटेनेंस ॾींदो, उनजो जेतिरा बि उनजी बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि जंहिंमें तव्हांजी क्लोथिंग थी वई, फूड थी वियो, तव्हांजी जेकी इवेंट्स थी विया, ईद जा सेलिब्रेशन थी विया, या खाधो पीतो, शादी मुरादी, जेके असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, उन्हनि जे जेकी बि चवजे त जेको बि मेंटेनेंस आहे, उहो हस्बैंड जे मथां ऑब्लिगेशन आहे, उनजी रिस्पॉन्स ability to fulfill their things. ईअं वुमेन जी जेकी जीअं मर्द औरत जे मथो छा थो राइट्स थो रखे, की औरत जो कमु आहे त पंहिंजे मुड़ुस जे जेतिरा बि हुनजी डेली लाइफ में ख़्यालु रखणु, हुननि जे ॿारनि जो ख़्यालु रखणु, हुन जे घर वारनि जो ख़्यालु रखणु ऐं रिलेशन्स खे जेको आहे न बहितर खां बहितरीन करे रखणु. मुड़ुस जी अगरि कुझु मिसाल सपोज़ अगरि मुड़ुस जी हालातनि ऐं कंडीशन खे ॾिसी करे उन सां हलणु, अननेसेसरी डिमांड्स न करणु, ऐं एज़ पर इस्लामिक लॉज़ या एज़ पर जेकी सोसाइटी असांखे जेकी लिमिट्स ऐं कंडीशन्स ॾिनियूं आहिनि उन ते पूरो learn, these are the rights of the husband and the wife, hik be je matho jeke unja rights hain.
1: All right, haane sir wajah te achun pya, reason se achun pya, yo talaq ya jeka ta khula and divorce in je pya reason cha hundo a?
0: Baba, reason ghar ja halat, suppose agar ikde murse ji pagar 40,000 a ऐं वाइफ डिमांड करे थी त मूंखे ज्वेलरी बि खपे, मूंखे ब्रांडेड कपिड़ा बि खपनि, मुंहिंजे ॿारनि खे प्राइवेट स्कूल में बि पढ़णो आहे, मूंखे गाॾी बि खपे, बंगलो बि खपे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐं कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे त असां शादी खां अॻु में एक्सपेक्टेशन्स इलाही वधाए छॾंदा आहियूं त तव्हांजी घर न्याणी सुखी रहंदी, घर अलॻि मिलंदो, कमिरो अलॻि मिलंदो, उनखे रहणी करणी अलॻि मिलंदी, ठीकु आहे, ऐं उनजी हर ज़रूरियात पूरी कंदो. अगरि सपोज़ को स्टडी करणु चाहे थी, फर्दर स्टडी बि कंदी, माना उनखे रोक टोक न हूंदी ऐं उनखे हिकिड़ो बहितरीन माहौल मिलंदो. पर बनिस्बत कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे, सॼी कंडीशन्स डिफरेंट निकिरंदी. उहे शयूं बि जेको आहे न जनरेट कंदियूं अॻिते हली करे इन सिचुएशन्स खे.
1: ऑल राइट, ऐं सर जीअं वर्बली तलाक जीअं हूंदी आहे या हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे, असां चाहींदासीं तव्हां प्रोसेस ॿुधायो असांजे व्यूअर्स खे त डाइवोर्स जो प्रोसेस छा आहे ऐं खुला जो प्रोसेस छा आहे, कीअं वठी सघिजे थो.
0: खुला लाइ त एतिरे क़दुरु चयो वियो आहे बाबर, के अगरि औरत इहो बि चए न त मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस जो चहिरो ई नथो वणे, त

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर टोपियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: टाइमली जेको आहिनि हल थी वञनि. ॾिसो एडीआर में मां प्रोग्राम ब्रेक ते वञण खां अॻु में हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल्स ठहंदियूं आहिनि. हाणे ई ॻाल्हि अचे थी त रुसी थी वञे ऐं जेको आहे न मर्द अप्रोच बि नथो करे. सभिनि खां तव्हांखे शायदि यादि हूंदो जॾहिं मां गार्डियन वारो जॾहिं प्रोग्राम कयो त हुन में हिकिड़ो लफ़्ज़ उनमें हिकिड़ी कुझु पॉइंट्स मां रेज़ कया. हुन में इहो चयुमि त जेकॾहिं शादी कराइण खां वठी करे निकाह ताईं जॾहिं फैमिलीज़ गॾु आहिनि त उन में जॾहिं फैमिली जॾहिं ड्यूरिंग शादी जे अंदरि प्रॉब्लम्स था थियनि पिया त उते गॾु छो न आहिनि. जॾहिं मेहंदी में गॾु आहिनि, वनवा में गॾु आहिनि, निकाह में गॾु आहिनि, वलीमन में गॾु आहिनि, सतावड़े में गॾु आहिनि, त पोइ जॾहिं हस्बैंड ऐं वाइफ जे विच में मसला थियनि था पिया त उते बि हुननि जो रोल सुठो प्ले थियणु खपे न. सिर्फ़ु ॿिनि घरनि जे विच में रोल न हुजे. अगरि मिसाल ॿ घर आहिनि, फैमिलीज़ आहिनि, त हुन में जेको चाचो आहे, मामू आहे, पाड़े वारो आहे, अगरि कोई बि सम्झे थो त हिन ॿा हिन फैमिली खे या हिन विच में मां अची करे प्रॉब्लम खे सोल्व करे सघां थो. पाड़े वारे में मुराद मां इहो कॉन्सेप्ट खणंदुमि त जेके क्लोज़ हूंदा आहिनि फैमिली जे चालीह चालीह साल पंजाह पंजाह साल जो रिलेशन थी वेंदो आहे. जॾहिं ॿ घर पाण में कनेक्टेड हूंदा आहिनि त लाज़मी हिक ॿिए खां परे न हूंदा आहिनि. अगरि हुनजो बुज़ुर्ग बि अगरि चाहे थी हिन घर जा हालात ख़राब था थियनि, फैमिलीज़ टुटनि थियूं पाण में, त उहो बि हिकिड़ो रोल प्ले करे सघे थो पियो. पाण लोकेलिटी जो मौलवी रोल प्ले करे सघे थो पियो त हिन जो रिश्तो, हिन जो रिलेशन्स, त असां जेको आहे न तलाक या कुल्हा ते वञण खां बहितर आहे असां ई सॉर्ट आउट कयूं. त मुंहिंजी सजेशन इहा ई हूंदी, एडवाइज़ इहा ई हूंदी की अगरि अहिड़ी सिचुएशन क्रिएट थिए थी पई त उनखे वर्स्ट करण जे बजाए, उनखे कॉम्प्लिकेटेड करण जे बजाए, ॿिनि धुरियुनि खे विहारे करे उनजी टर्म्स ऐं कंडीशन डिसाइड करे हस्बैंड ऐं वाइफ खे हिकिड़े लाइन ते, हिकिड़े पेज ते आणणु खपे. जंहिंजो सिंपल मेथड आहे डीआर, मीडिएशन थी सघे थी, आर्बिट्रेशन थी सघे थी, नेगोशिएशन थी सघे थी, रिकॉन्सिलिएशन थी सघे. दीज़ आर द मेजर टर्म्स दैट आर बींग यूज इन द आर्बिट्रेशन सिस्टम. सो मुंहिंजी सजेशन त इहा आहे त हर उन फैमिली मेंबर खे पंहिंजो रोल प्ले करणु खपे जेके शादियुनि में गॾु आहिनि.
1: ओके ओके, सो लाइव कॉलर जी तरफ़ असां हलंदासीं. लेट सी लाइन ते करे केरु आहिनि, नंबर मां अनाउंस कयां पियो 03000 11 34 88. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सो बिल्कुल प्रोग्राम में कुझु सिग्नल्स इशू आहिनि, तव्हांखे मां रिक्वेस्ट कंदुसि त तव्हां अहिड़े लोकेशन ते बीह करे कॉल कयो जिते अव्हां वटि नेटवर्क जा सिग्नल्स कंप्लीट हुजनि, त जीअं अव्हांजो आवाज़ क्लियर असां ताईं पहुचे. लीगल कॉर्नर प्रोग्राम आहे जंहिंमें अव्हां लाइव कॉल जे लाइ नंबर डायल करे सघो था 03000 11 34 88. सर, खुला ऐं डाइवोर्स जे बारे में तव्हां ॿुधायो, ए डी आर जे बारे में जेको आहे त फैमिली खे जेको आहे त फैमिली जे वॾनि खे जेको आहे त रोल प्ले करणु घुरिजे. ज़रूरी आहे. सर, मेंटेनेंस ते हाणे असां अचूं पिया, उहा कीअं जेकी आहे त मेंटेन करे सघिजे थी हस्बैंड पारां?
0: मेंटेनेंस बाबर, अगरि वाइफ जो हक़ आहे बेसिकली पंहिंजे मुड़ुस जे मथां की हुन खां उजर वठी सघे थी. मेंटेन माना मेंटेनेंस मां मुराद सिर्फ़ु पैसो न आहे.
1: जी,
0: मेंटेनेंस मां मुराद इहो आहे त हर उहा बेसिक नेसेसिटी हस्बैंड वाइफ जी फिल करे जेकी उहा हुनजे मथां फ़र्ज़ु आहे. उन में लटो, कपिड़ो, एजुकेशन, अगरि वाइफ अगरि इजाज़त वठणु चाहे त मां नौकिरी बि करणु चाहियां थी त हस्बैंड अगरि राज़ी आहे त हुनखे हुनजी बि इजाज़त ॾे. पंहिंजे उनखे छोकिरी खे अगरि चाहे त पंहिंजे घर वञण जी बि इजाज़त ॾे. उनजी जेकी बि बेसिक ज़रूरियात आहिनि, बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि, उहे मुड़ुस जे मथां फ़र्ज़ आहिनि. उनखे चइबो आहे मेंटेन करणु. ठीकु आहे, पोइ उहा पैसे जी शकल में बि थी सघे थी ऐं फिज़िकली अगरि मर्द चाहे त औरत खे पाण बि मेंटेन करे सघे थो पियो.
1: ठीकु आहे, हाणे सर इन सिचुएशन में जेको आहे त मेंटेनेंस हस्बैंड खे ॾियणी आहे, जीअं मिसाल ॻाल्हि कई त वाइफ जेकी आहे त रुसी करे वञी सावरे में अची आहे ऐं ड्यूरेशन वधी वियो आहे, ॿ टे साल थी विया आहिनि, त छा मेंटेनेंस तॾहिं बि ॾियणी आहे?
0: मेंटेनेंस त ॾियणी आहे.
1: ओके,
0: मेंटेनेंस हस्बैंड मतो मैंडेटरी आहे. त अगरि औरत शादी करे आई आहे ऐं शादी कंज्यूम थी वई आहे त हाणे उहा हुनजे मथां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वई के पंहिंजी घरवारीअ खे मेंटेन करे. मां ॾिसो रिपीट उहा ई ॻाल्हि कई,
1: रुसी वई त
0: रुसण खां पोइ बि ॾिसो न, रुसी वई
1: आहे,
0: रुसी वई आहे, तलाक न थी आहे न, हुनखे परचाईंदो, डेफिनेट हुनजी वाइफ आहे. अगरि हुनखे मेंटेन कंदो, ॾिसो न हाणे रुसण जा रीज़न्स छा हूंदा
1: आहिनि. तव्हां अहिड़ा केसिस ॾिठा आहिनि, मूं बि ॾिठा आहिनि त रुसण खां बाद में जेको आहे न वाइफ पारां जेको आहे न तमामु घणियूं डिमांड्स कढी वेंदियूं आहिनि. स्पेशली तव्हां ॾिठो हूंदो त सेपरेशन घर जेको आहे त अलॻि था वठो ऐं हस्बैंड जेको आहे न अफोर्ड न करे सघंदो आहे, त इन सिचुएशन में हस्बैंड छा करे?
0: पहिरीं ॻाल्हि त बाबा ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त इहो त पहिरां त वॾा वॾा ख़्वाब ई न ॾेखायो था. चवंदा आहिनि बेस्ट सुठी ॻाल्हि इहो ई आहे त मेन शुड रिमेन अटैच विथ रियलिटी. अगरि तव्हांखे ख़बर आहे त हिकिड़े माण्हू जी पघार एतिरी आहे त तव्हां कंहिंखां रिश्तो वठो था पिया त हुनखे वॾा वॾा ख़्वाब न ॾेखायो त बसि असां छोकिरे जे पोयां बीठा आहियूं नियाणी असांजी नियाणी असां संभालींदासीं शादी खां पोइ सेज खां पोइ ॿिए ॾींहुं ख़बर पई सतावड़े खां पोइ लकुम थी नकुम वलीअ दीन बाबा तव्हांजो रस्तो असां सां हिननि जो रस्तो असां सां ईअं न हुजणु खपे तव्हां बेसिक रियलिटीज़ छोकिरे जी अॻु में ई ॿुधायो त मिसाल मुंहिंजो बचो आहे मुंहिंजो पुटु आहे या मुंहिंजो भाटियो आहे मुंहिंजी भाटी आहे या मुंहिंजो भाणे जो आहे हुनजी एतिरी सोर्स ऑफ इनकम आहे अगरि तव्हांजी नियाणी हुन में कम्फर्टेबल आहे तव्हां कम्फर्टेबल आहियो त रिश्तो ॾियो अदरवाइज़ तव्हां अगरि पंहिंजी नियाणी जो बहितरीन खां रिश्तो करणु चाहियो त करे छॾो असां जेके डे ड्रीम्स ॾेखारे छॾंदा आहियूं न ख़्वाब वॾा वॾा ॾेखारे छॾंदा आहियूं पोइ हुन रियलिटीज़ ते जॾहिं न बीहंदा आहियूं त पोइ रिश्ता ऐं हालात ख़राबु थींदा आहिनि असांजी इस्लाम बि असांखे इजाज़त ॾिए थो बल्कि दुनिया जो हर मज़हब इजाज़त ॾिए थो त जॾहिं बि हस्बैंड ऐं वाइफ जी शादी थी वञे त दे मस्ट रिमेन सेपरेटिड उन्हनि खे हिकिड़ी अलॻि सेपरेट अलॻि कमरो अलॻि जॻह ॾिनी वञे त पंहिंजी हिकिड़ो लाइफ ऐं हिकिड़ो केरियर स्टार्ट करणु ॿियो असां वटि हिकिड़ो कॉमन सेंस आहे जीअं शादी थींदी त वालदेन खे ईअं लॻंदो आहे त बसि पुट असांजे हथनि मां हले वियो ठीकु आहे छोकिरी जे ॿारनि खे ईअं लॻंदो आहे त असांजी नियाणी असां वटि ईंदी न अगरि हस्बैंड बाए चांस अगरि पंहिंजी घरवारी खे कुझु स्पेसिफिक टाइम लाइ रोके थो पियो या कुझु फैमिली मेंबर्स खे रेस्ट्रिक्ट करे थो पियो मुंहिंजे घर में इन जो अचणु वञणु बंदि थिए त औरत जे मथां बि आहे त उहा हुनजी उन सिचुएशन खे सम्झे अगरि पंहिंजी फैमिली खे पंहिंजे घर खे सुठे तरीक़े सां मेंटेन करिणो आहे हिन जो मक़सदु छा आहे जे मां चयुमि बेटर हाफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड ऐं वाइफ में जेसिताईं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग न हूंदी इहे प्रॉब्लम्स क्रिएट थींदा रहंदा डिमांड्स इहे ई त हूंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां वॾा वॾा ख़्वाब ॾेखारे छॾींदव त हुन ख़्वाबनि ते पुॼी न सघंदव त पोइ हालात वर्स्ट थी वेंदा आहिनि पोइ रुस पोइ रुसणु पोइ घर हलियो वञणु पोइ फैमिली मेंबर्स जो पाण में जेको आहे न उनजो रिलेशन्स पाण में ख़राबु थियनि दीज आर द बेसिक बेसिक थिंग दैट क्रिएट्स सच काइंड ऑफ डिफरेंसिस के औरत ऐं हस्बैंड जे विच में इहा तलक कलामी थी वेंदी आहे
1: अच्छा सर अक्सर जेको आहे त निकाह जे टाइम जेको आहे न इहे शरायत लिखाया वेंदा आहिनि त बाबा अगरि वाइफ रुसी थी वञे त तव्हांखे हुन ॾंड में जेको आहे त एवरी मंथ एतिरी अमाउंट ॾियणी आहे ऐं हू अफोर्ड न करे सघंदो आहे हस्बैंड त हू छा हुन जे लाइ लीगल को रस्तो आहे त उहा क्लेम करे सघे थी अगरि इहो शर्त लिखियल आहे
0: वंस अगेन इहा ॻाल्हि कई त माली हालात तव्हां कंहिंखां रिश्तो वठणु वञो था हुनजी रियलिटी तव्हां हुनखे ज़रूरु ॿुधायो हाणे हिकिड़े माण्हू जी सोर्स ऑफ इनकम आहे ई न हिकिड़ो माण्हू हक़ महर एतिरो ॾेई नथो सघे वरी तव्हां निकाह हिन में बि टर्म्स ऐं कंडीशन लिखारायो था त अगरि रुसी वेंदी त एतिरा ॾींदो त ठीकु आहे हिकिड़ो माना पेरेंट्स आहिनि पंहिंजी नियाणी जे लाइ सोचनि था केयरफुल आहिनि की सुभाणे अगरि कंडीशन हालात अगरि थी वञनि त असां वटि ऑलरेडी निकाहनामे में छोकी निकाहनामो बि रजिस्टर थो थिए अॼुकल्ह निकाह रजिस्ट्रेशन एक्ट जे हिसाब सां इहो बि हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री वैल्यू थो रखे इहो बि हिकिड़ी स्टाम्प पेपर जी वैल्यू थो रखे पियो छोकी हुन में शायदि ऐं गवाह अवेलेबल हूंदा आहिनि अगरि उहो लिखाए कॾहिं करे घर बि लिखाए वठंदा आहिनि सोन लिखाए वठंदा आहिनि उहो टर्म्स एतिरी क़दुरु एतिरो बि लिखाराईंदा आहिनि जेकॾहिं असांजी नियाणी चाहे त तोखां कुला बि वठी सघे थी पई हुन में त हुनखे मना बि न कंदे सो अगरि उहे लिखाराइनि था त दिस इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द ब्राइड ब्राइड जे करे सेफ्टी ॾींदा आहिनि त असांजी नियाणी किथे सुख में हुजे सुभाणे मामलात ऐं हालात ख़राबु थियनि त कुझु न कुझु क्लेम करे सघनि बसि कुला ऐं तलाक में इहो फ़र्क़ु आहे जेकॾहिं औरत कुला वठे थी पई त हुनखे पंहिंजो हक़ महर मुड़ुस खे ॾियणो पवंदो अगरि हस्बैंड डाइवोर्स ॾिए थो पियो त पोइ हुनखे हक़ महर जेको बि छॾिणो पवंदो औरत खे विड्रॉ करिणो पवंदो पोइ मुड़ुस खे ॾियणो माली हालात ॿिन्हिनि मां कंहिंजा सुठा आहिनि जीअं अगरि मिसाल कुला जी कंडीशन ते असां अचूं त मुड़ुसु ड्रंकर आहे मुड़ुसु अलील आहे बीमार आहे प्रोलोंग इलनेस खां रखे थो पियो इलिटरेट आहे या हुनजी उहा मेंटल स्टे कंडीशन स्टेबल ई न आहे त पंहिंजे ॿारनि खे संभाले उन जॻह ते औरत सपोज औरत सोशली स्ट्रॉन्ग आहे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग आहे इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आहे मुड़ुस खां सुठो कमाए थी सुठो सोर्स ऑफ इनकम अथसि ऐं पंहिंजे ॿारनि खां बहितरीन तालीम ॾेई सघे थी त अगरि वाइफ चाहे त पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी पाण वटि रखी सघे थी पई इन निस्बत में अगरि और मर्द स्ट्रॉन्ग आहे पंहिंजी औरत खां ऐं औरत ॿी शादी करे छॾी आहे त इन निस्बत में जेको पेरेंट आहे जेको पीउ आहे पंहिंजा ॿार क्लेम करे सघे थो गार्डियन वार्डन में
1: अच्छा उहा एज केतिरी हुजणु घुरिजे ॿार जी
0: ॾिसो न ॿार जी हूंदी आहे एज़ पर सुनी लॉ जे हिसाब सां 7 साल फॉर द छोकिरो ऐं 14 साल फॉर द गर्ल छोकिरी जे लाइ 14 साल एज हूंदी ऐं जेको आहे न पुट जे लाइ 7 साल हूंदी इन एज में जेको आहे न पीउ पंहिंजे ॿारनि जी कस्टडी क्लेम करे सघे थो
1: ओके ऐं अगरि हिन खां घटि एज में आहे फॉर एग्जाम्पल
0: हाली हुनजी औरत जी हाली हुनजी माउ जे हुन में ई रहंदा पैटर्न में ई रहंदा पैटर्नेज जेके चइजे सरपरस्ती में रहंदा पर डिपेंड करे थो त मदर जी कंडीशन कीअं आहे छा फाइनेंशियली सोशल इकोनॉमिकली वीक त न आहे अगरि उहो वीक आहे त कोर्ट अगरि चाहे थी अगरि हस्बैंड आहे सेपरेट थी वियो आहे त उहो कोर्ट में एप्लीकेशन ॾींदो अंडर सेक्शन 25 जेके असां चवंदा आहियूं 7, 10, 17, 25 इहे हिकिड़ी सेक्शन्स आहिनि गार्डियन अवॉर्ड जा जंहिंजे थ्रू पी पंहिंजी गार्डियनशिप क्लेम करे सघे थो ॿारनि जे लाइ उन में इहे कंडीशन असां कंडीशन्स इहे लिखंदा आहियूं के सोशली स्ट्रॉन्ग आहे पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग आहे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग आहे ऐं फाइनेंशियली बि स्ट्रॉन्ग आहे पंहिंजे ॿारनि खे सुठी स्कूलिंग ॾेई सघे थो क्लोथिंग ॾेई सघे थो उनजी फीडिंग सुठी कराए सघे थो पियो ठीकु आहे उनजी जेको बि मेडिक आहे उहो जेके असां मेडिसन्स चवंदा आहियूं उनजी केयर सुठी करे सघे थो काइंडली द चिल्ड्रन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द फादर अगरि फादर वाइस वर्सा चवजे अगरि फादर उन कंडीशन ते न आहे त कंडीशन द कस्टडी शुड बी गिवन टू द मदर छोकी दी बोथ आर द नेचुरल गार्डियंस
1: ठीकु आहे सर हाणे हक़ में रहण अदर फाइनेंशियल असां राइट्स थी अचूं डावरी आर्टिकल्स थी विया या हक़ में थी वियो इन जे बारे में पाकिस्तानी लॉ छा पियो चवे
0: क्लेम करे सघनि था मां जीअं हाणे चयुमि त फैमिली लॉ
1: जे हिसाब सां जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त हिन जी छा लिमिटेशन्स आहिनि छा हक़ में कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे शादी में त ज़ोरी जेको आहे त वधीक अमाउंट लिखारायो वेंदो आहे जेको हस्बैंड एग्री न हूंदो आहे चलो उहो लिखजी वियो त उन खां बाद में जेको आहे त
0: उन खां पोइ ॾिसो न हाणे हक़ में केस दाख़िल थो थिए डावरी आर्टिकल्स जो या हक़ में जो केस दाख़िल थो थिए पियो त अगरि क्लेम करे थी छोकिरी क्लेम करे थी मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स एतिरो हुयो मुंहिंजो सोन एतिरो हुयो देन दे मस्ट प्रोड्यूस द एविडेंस उहो किथे थींदा फैमिली कोर्ट में उहो लिस्टूं ॾींदा रसीदूं ॾींदा ऐं जेको उहो क्लेम करनि था पिया जंहिंमें निकाहनामो आहे ओरिजिनल निकाहनामो ॾियणो पवंदो इन्हनि सभिनि खे अॻियां रखी करे देन इट विल बी डिसाइडेड दैट क्लेम दैट इज़ मेड बाय द ब्राइडल या ब्राइड जेको क्लेम कयो आहे छोकिरी जेको कुंवार क्लेम करे थी कुंवार न चवजे छोकिरी चवजे अगरि उहो क्लेम करे थी त मुंहिंजो डावरी आर्टिकल्स एतिरो हुते पिया आहिनि त सभ खां पहिरियों जेको आहे न शी हैज़ टू प्रूव दैट थ्रू डॉक्यूमेंटेशन उन खां पोइ जज डिसाइड कंदो जॾहिं हुनजी एविडेंस ईंदी जज डिसाइड कंदो त वाकई उहो डावरी आर्टिकल्स हुते अवेलेबल आहे या न आहे उनजे विच में हिकिड़ी असां एप्लीकेशन ॾींदा आहियूं कोर्ट में त रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल जी जेकी हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर थींदो आहे के इन विच में जेतिरो बि अगरि सामान पियो आहे त उन में असां जेको आहे न बेलफ जेके असां नाज़िर चवंदा आहियूं उहो अपॉइंट थींदो आहे कमिशनर अपॉइंट थींदो आहे के जेतिरो बि डावरी आर्टिकल्स जेको पियो आहे हुते एट प्रेज़ेंट उहो खणाए वठो उन खां अलावा अगरि जेको नाहे अवेलेबल या यूज़ थी वियो आहे या शो नथा करनि पिया उन ते पोइ सॼी हिकिड़ी एविडेंस लीड थींदी आहे की सर मैडम असांखे हेतिरो सामान मिलियो आहे ऐं हे सामान हिन असांजो लिखायो आहे अमूमन छा थींदो आहे डावरी आर्टिकल्स में मेजर जेको सामान हूंदो आहे वॾो उहो मिली वेंदो आहे
1: जी जी
0: उन में नंढो नंढो मिसल क्लोथिंग थी वई ॿिया सामान थी विया मेकअप थी विया या को अहिड़ो क्रोकरी जेके चइजे उहो यूज़ थी वेंदी आहे त मेजर सामान असांखे मिली वेंदो आहे 80% to 70% सामान जंहिंमें सोफा सेट एसियूं वग़ैरह मिली वेंदियूं आहिनि टीवी मिली पर नंढो सामान न मिलंदो आहे ऐं इन खां वधीक जेको मेजर सामान हूंदो आहे उहो हूंदो आहे गोल्ड
1: जी
0: ठीकु आहे न त असली जेको मेन जेको कॉम्पिटिशन जेको हुते हलंदो आहे जेको मेन कंटेस्ट जेके चइजे बिटवीन द पार्टीज़ उहो जेको मेन द बोन ऑफ कंटेंशन हूंदी आहे उहो हूंदो आहे ऑर्नामेंट्स
1: उहो
0: ऑर्नामेंट डिसाइड करण में थोरो टाइम लॻी वेंदो आहे जंहिंमें तव्हांजी रसीदूं लाज़मी आहिनि मैंडेटरी आहिनि जेकी शो करनि त वाकई गोल्ड हस्बैंड ॾिनो आहे ऐं दे डज़ नॉट बिलोंग टू द ब्राइड या कुंवार या जेकी छोकिरी आहे जेकी तलाक या कुला वठणु चाहे थी उनजो उन सां तालुको नथी रखे पई
1: ऑल राइट सर हीउ त असां हिन ते तक़रीबन असांजो तक़रीबन जेको आहे कवर थी वियो आहे डावरी आर्टिकल्स ते असां अची वियासीं हक़ मेयर ते अची वियासीं हिन खां अलावा जेको आहे त मिसकनसेप्शन्स आहिनि असांजी सोसाइटी में स्पेशली खुला वठण लाइ जेका आहे त हस्बैंड जी परमिशन लाज़मी आहे इन मिसकनसेप्शन खे कीअं पिया ॾिसो
0: खुला वठण जो पहिरीं ॻाल्हि त केरु चाहींदो त मुंहिंजी घरवारी मूंखां खुला वठे पर अगरि हालात ऐं कंडीशन परमिशन ॾिसो न अगरि म्यूचुअल परमिशन आहे
1: ऐं फोर्स कयो वेंदो आहे त खुला वठी वञे इंस्टीट्यूट ऑफ डाइवोर्स
0: मुड़ुसु कॾहिं बि हा पहिरीं ॻाल्हि त अगरि सपोज़ औरत खुला वठे थी त असां वटि मेजोरिटी 90% केसिस इहे हूंदा आहिनि त अगरि औरत खुला वठंदी आहे त हस्बैंड सिर्फ़ु प्री ट्रायल असां हुनखे चवंदा आहियूं कोर्ट में हिकिड़ो प्री ट्रायल थींदो आहे वुमेन आई आहे क्लेम करे थी शी वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड उहो क्लेम करे थी जज साहब के रिक्वेस्ट करे थी सर आई डोंट वॉन्ट टू लिव विथ हिम उन जे थ्रू जज साहब छा कंदा हिकिड़ो प्री ट्रायल जेको आहे न अरेंज कंदा आहिनि जंहिंजो सोल पर्पज़ इहो हूंदो आहे कि वाट आर द डिफरेंसिस दैट हैज़ बिन क्रिएटिड बिटवीन द बोथ पार्टीज़ के आख़िर वजह छा आहे कि लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड लेडीज़ ऐं जेको आहे न हस्बैंड जे चइजे कि मुड़ुसु ऐं घरवारी पाण में तलाक वठण जा रीज़न्स छा आहिनि उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक कलाक ॾेढ कलाक जंहिंमें जज एज अ जज न वेठो हूंदो आहे बल्कि फैमिली मेंबर वांगुरु हिकिड़ी सरपरस्त वांगुरु हिकिड़ो पैट्रोनेज वांगुरु अगरि मां हिनखे चवां त हिकिड़ी आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन काउंसिल वांगुरु हिकिड़ो रिप्रेजेंट कंदो आहे पाण खे उन्हनि खां रीज़न्स पुछंदो आहे वजूहात पुछंदो आहे उनखे एतिरे क़दुरु सेटिस्फाई कंदो आहे कि बाबा विद इन वॉल जीअं हाणे असां पॉडकास्ट में वेठा आहियूं जीअं वॉल आहे पूरी कमरो बंदि लॻो पियो आहे त जीअं उन उन विद इन वॉल में जज साहिबु या जज लेडी हुजे या मेल हुजे उहो पूरो स्पेसिफिक टाइम ॾींदा आहिनि पहिरियों हस्बैंड खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा आहिनि अगरि कुल आहे त पहिरियों वाइफ खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾींदा उनखां पूरी वजूहात पुछंदा वरी उनजे रिब्यूटल में हस्बैंड खां साॻा ई सुवाल कंदा त तव्हां हिन जे सुवाल जा जवाबु ॾियो उन सां छा थींदो आहे जज जो माइंड क्लियर थी वेंदो आहे की अगरि औरत तलाक कुला वठणु चाहे थी त हुनजो बेसिक जेकी पर्पज़ हुयो उहो इहो हुयो तलाक वठण जो हस्बैंड खे चवंदा त तूं इन शयुनि ते छो न लथी अगर उन्ही टाइम प्री ट्रायल जे टाइम अगर हस्बैंड रिग्रेट करे तो गलतियूं तस्लीम करे तो चए तो ॿीहर मां पंहिंजी घरवारी खे नाराज़ न कंदुमि भले चाहे तव्हां मूंखां लिखत में ते वठी छॾो इनशाला मुंहिंजी घरवारी ॿीहर हिन कोर्ट में न ईंदी मां हिन जी हर जाइज़ डिमांड पूरी करण लाइ तयारु आहियां त मेजोरिटी ऑफ केसिस में छा थींदो आहे असांजा केसिस प्री ट्रायल में ई सोल्व थी वेंदा
1: आहिनि
0: हार्डली केसिस ईअं हूंदा आहिनि जेके कुला ग्रांट थी वेंदी आहिनि दे मूव सेपरेट दे मूव फ्रॉम वन एनदर दे पार्ट देयर वेस हिकिड़े रस्ते ते छोकिरो ॿिए रस्ते ते ठीकु आहे उन कंडीशन में असां प्री ट्रायल में असां ज़्यादातर केसिस सोल्व थी वेंदा
1: okay. अच्छा सर खुला खां बाद में जेको आहे कुझु ॿिया बि राइट्स आहिनि औरत जा हस्बैंड ते
0: खुला खां पोइ मेंटेनेंस आहे खुला खां पोइ तव्हां औरत मेंटेन क्लेम करे सघे थी पहिरियों त इद्दत पीरियड में हली वेंदी उहा इद्दत पीरियड पूरो कंदी त इद्दत पीरियड जेको उहा उहा क्लेम कंदी अगरि खुला सां गॾु ई हुननि मेंटेनेंस जो केस दाख़िल कयो आहे त पास्ट प्रेज़ेंट फ्यूचर मेंटेनेंस बि वठी सघे थी पई पर जॾहिं खुला ग्रांट थी वञे त पोइ इद्दत पीरियड जी जेकी मेंटेनेंस आहे उहा हुनजे मथां हस्बैंड जे मथां जेको आहे न ऑब्लीगेट थी वञे ऐं हुन खां पोइ जेको हक़ आहे उहो हक़ महर औरत जेको आहे न डिक्लाइन कंदी कुला वठे थी त डिक्लाइन कंदी जेको हस्बैंड जो आहे उहो हुनखे वापसि कंदी अगरि हुन हक़ महर में सोन बि आहे अगरि हुन हस्बैंड सोन ॾिनो आहे त उहो औरत खे ॾियणो आहे एज़ पर शरिया बि हुनखे ॾियणो आहे ऐं रहियो डावरी आर्टिकल्स जो त डावरी आर्टिकल जीअं कुला ऐं इद्दत पीरियड पूरो थींदो त उहो डावरी आर्टिकल्स उहो क्लेम करे सघे थी ऐं पंहिंजो इद्दत पीरियड जो मेंटेनेंस उहा बि क्लेम करे सघे थी पई फ्रॉम द हस्बैंड
1: ऑल राइट सो सर प्रोग्राम जो वक़्तु बि तक़रीबन पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचण वारो आहे लास्ट में तव्हां असांजे लिसनर्स खे स्पेशली जेके असांखे ॿुधनि पिया हस्बैंड वाइफ्स स्पेशली वाइफ्स जेके आहिनि त मामूली ॻाल्हियुनि ते जॾहिं रुसी वञनि थियूं या हस्बैंड जेके आहिनि परेशान लॻा पिया आहिनि या राइट्स हिक ॿिए जा वायोलेट कनि पिया अनअवेयर आहिनि उन्हनि खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा त जीअं हू डाइवोर्स या अहिड़े खुला जी तरफ़ वञण खां पहिरां इहे जेके नॉर्मल ऐं नंढा नंढा मसला आहिनि उहे पाण ई जेके आहिनि त हल करे वठनि
0: मुंहिंजी हिकिड़ी सलाह इहा ई हूंदी बाबर सभिनि खे ॿुधण वारे जेसि ताईं मुंहिंजी आवाज़ु वञे थी मां जेकी मूंखे अलाए इल्मु ॾिनो उन हिसाब सां मां ॻाल्हाईंदुमि के अगरि तव्हांजो डिसीशन अची चुको आहे तलाक ते या डिसीशन अची चुको आहे कुला ते त काइंडली पंहिंजे ॿारनि खे सिर्फ़ु ॾिसी वठनि हिकु दफ़ो त जेके साम्हूं मासूम ॿार घुमनि था इन्हनि जो छा थींदो छो की जेके सभिनि खां वधीक इफेक्ट थींदा आहिनि उहे पेरेंट्स जे दौरान उहो ॿार
1: थींदा
0: इन जे करे सभिनि खां वधीक नापसंदीदा अमल जेको आहे न अलाह खे पसंदि आहे उहो तलाक
1: आहे
0: ठीकु आहे उन सां ॿियो कुझु न थींदो ॿ फैमिलीज़ पाण में अलॻि थी वेंदियूं हाणे तव्हां अंदाज़ो लायो तव्हां बि नई माशरे में रहो त मां बि सेम माशरे में रहंदो पियो मेहंदी खां वठी करे ओ मेहंदी थो चवां पंहिंजो नालो छा आहे पोती जेके असां चवंदा आहियूं रसम खां वठी करे मंगणी खां वठी करे इतां खां वठी करे वेंदे सतावड़े ताईं केॾो कमाल जो मंज़रु हूंदो आहे जंहिंमें असां शादियुनि में जंहिंमें असांजी ईदूं बि ईंदियूं आहिनि जंहिंमें असांजा इवेंट्स बि ईंदा आहिनि केॾे शौक़ सां केॾी मुहबत सां सामान खणी वेंदा आहियूं सेलिब्रेट कंदा आहियूं या फैमिली मेंबर्स में अगरि जनरली बि गैदरिंग थी वेंदी आहे त हुन कपिल्स ते केॾो डिस्कशन कंदा आहियूं तव्हांजी शादी जॾहिं शादी जा इवेंट्स हूंदा आहिनि केॾो बहितरीन तरीक़े सां पूरी ॿ ॿ फैमिलीज़ जेकी ॾह ॾह फैमिलीज़ आहिनि पूरो सेलिब्रेट कंदियूं आहिनि सेलिब्रेट उहा जेकी ख़ुशी आहे उहा सिर्फ़ु नंढड़ी तल्क कलामी ते उहो सॼो जो सॼो जेको रिलेशन आहे सॼो सॼो ख़राबु थो थिए. मां नथो चवां त मेजॉरिटी ऑफ केसिस में ईअं थींदो, मेजॉरिटी ऑफ केसिस में रिलेशन्स इलाही जॾहिं ख़राबु थी वेंदा आहिनि तॾहिं वञी हालात तलाक ऐं कुला ते पुॼंदा आहिनि. अगरि नॉर्मल सिचुएशन आहे, कंट्रोलेबल आहे, कंट्रोल करे सघिजे थी, त मां चवंदुसि त फैमिली पंहिंजो रोल प्ले करनि, ऐं हिन खां बहितर आहे त पंहिंजे बचनि खे ज़रूरु हिकु दफ़ो ॾिसनि, कॾहिं बि ज़हन में अगरि हुनखे इहा अचे या अहिड़ो को मूमेंट क्रिएट थिए त मां पंहिंजी घरवारी खे तलाक थो ॾियां या वाइफ चए त मां पंहिंजे मुड़ुस खां कुला थी वठां, दे नीड टू सी देयर चिल्ड्रन्स. बसि अलाह करे, मुंहिंजी इहा ई दुआ आहे सभिनि सां, अलाह सभिनि जे घर में हिफ़्ज़ ऐं अमान रखे, हस्बैंड ऐं वाइफ जेके बि जिते बि आहिनि अलाह जी पनाह में हुजनि, ठीकु आहे, ऐं हुननि जा बचा हुननि सां गॾु ई अटैच हुजनि, पंहिंजी सुठी ज़िंदगी, पंहिंजी सुठी लाइफ स्टैंडर्ड गुज़ारनि. मुंहिंजी दुआ इहा ई आहे, मुंहिंजी एडवाइस बि इहा.
1: चलो शहबाज़ साहब, तव्हांजी महिरबानी,
0: थैंक यू वेरी मच.
1: सो बिल्कुलु व्यूअर्स, प्रोग्राम जो वक़्तु बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ऐं तव्हांखे प्रोग्राम जे हवाले सां को फीडबैक ॾियणो हुजे त तव्हां असांजे व्हाट्सअप नंबर ते ॾींदव. असांजो नंबर आहे 03000 11 3488. फीडबैक तां ॻाल्हि यादि आई त माज़रत खां आहियां, तव्हांजी कॉल्स प्रोग्राम इंक्लूड न करे सघियासीं छाकाणि त नेटवर्क जो इशू अचे पियो. इन खे मां रिज़ोल्व करण जी कोशिशि कंदुसि. अॻिले प्रोग्राम में वरी नए टॉपिक सां गॾु अवां सां मुलाक़ात थींदी. तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैरु.

0: Therapy, nurse या health professional बन जाएं तो पर तवां लाए आए एक बेहतरीन मौके सखर जो मौतबर इदारों सिराजुद्दीन Institute of Professional Studies में इन सेशन लाए दाखलाओं जारी हैं चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM पंज सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी DPD बिन सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA खास सहूलतों स्कॉलरशिप्स मौजूद बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री जरे त डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया हिते तवा के मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेज OT हेल्थ टेक्नीशियन आई ब्या सब कोर्सेज पिन थिंदा आहिन एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 सखर टाउनशिप मेन बाईपास रोड सखर राबतो 07115635642 आई 0310 8166111
1: It's 8 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: GAFM 88 Network. Sindh Ki Awaaz.
2: College of Education Khairpur mein B.Ed. 1.5 sala ain B.Ed. 2.5 sala jo dakhlaun shuru thi vayu ahin jekade tawhan jo khwab ustad banjan ahe tahi behtareen mokyo hathan maan na vanyayo haani sindh hukumat je taleemi shobe sa laga pil ketren e nokri lai B.Ed degree lazmi banji rahi ahe tin kare aju hi dakhla watho panje teaching career ke mazboot buniyad liyo sindh je kahe bhi shahar ya zile sa vasto ho je tawha aasani sa dakhla wati sago tha asan wat maujood ahin air conditioned classrooms high speed wifi tajrubekar ai senior faculty mayari talimi mahol khas offer mahdood waqt lai ahe tin kare ajhi raabto karyo online apply lai forwardcollege.pk badhik jan lai 0304-282-7274 office time subuh 9 kha sham 5 baje tai address gulshan yasin colony taj petroleum service samu wapra colony khairpur ajhi dakhla watho panje mustaqbil ke mehfooz banayo ai ek kamyab ustad banjan na यो कदम बढ़ायो
4: अब आप सुनेंगे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़

0: शाहान अफरीदी, तरीके इंसाफ के दिन अपनी साख खो चुके हैं। इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी, अपनी पार्टी को भी। इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पर लीड कर सकें। और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2028 की डेट दें, अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बुजदिली, आपकी काबिली, आपकी सियासी नाअहली, इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है। और सियासी तौर पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं है केपीके के अंदर। हमने तो उसे मात्र तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने शहर का, अपने शहरियों का तहफ़ करना है, मगर ये बुजदिल ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा, ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान अफरीदी की रेट अपनी पार्टी पे खत्म हो चुकी है। इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है।
1: पीटीआई जो 27 सितंबर वारो मार्च खोटियो जबल निकतो कुओ साबित थियो आहे। सोहेल अफरीदी पहिरीं इंतज़ामी सतह ते नाकाम हो, हाणे सियासी सतह ते बि फेल थियो आहे। सुत समाव वारे फाकी वज़ीर ताला तरण चयो आहे त सोहेल अफरीदी जी पंहिंजी पार्टीअ तां रिट ख़तम थी वई आहे। पीटी

0: आई जो दहशतगर्दन सां बि गठजोड़ आहे जंहिं सबब हमलनि जी
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: लॉन्ग मार्च का पोए गालियों करण आहिं त पहरी चोनक तो कई वनन के खबर पख्तूनख्वा के वडे वजीर सोहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत के गालियन जी आज करे छी पेशावर में सीनियर साफियन से गल सोहेल आफरीदी चयो तो लॉन्ग मार्च में अं सत ढीन कोई भी गाल थियणी हाँ छो नथियों कई वन गालियन लाए पहरी भी तैयार हुआसी हाँ भी आयू वफाकी हुकूमत असब्लिशमेंट से गाल न डेई रही है मुल्क में एक शख्स की गाल हले थी जो नुमाइंदो मोहसिन नकवी है
1: साथ के अपनी साथ खो चुके हैं इन्होंने मायूस किया है अपने कारकुनान को भी अपनी पार्टी को भी इनके पास अब जवाब नहीं है कि ये सियासी तौर पे लीड कर सकें और आप 5 अक्टूबर की डेट दें या 5 अक्टूबर 2028 की डेट दें अब आपकी किसी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी बुजदिली आपकी काबिली आपकी सियासी नाअहली इंतजामी नाअहली तो थी मगर आपकी सियासी नाअहली भी अब साबित हो चुकी है और सियासी तौर पर कोई मोबिलाइजेशन नहीं है केपीके के अंदर हमने तो उनसे मातकदम तैयारी की कि आएंगे तो हमने अपने अपने शहरियों का तहफ़ करना है मगर ये बुज़दिल ना है लोग जिनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा ये अपनी सियासी साख मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं मगर सियासी तौर पे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि सोहेल खान आफरीदी की रेट अपनी पार्टी पे खत्म हो चुकी है इतनी सियासी कमजोरी कभी भी नहीं देखने में आई थी इन 13.5 साल में जितनी आप देखने में आई है
2: पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर वो मार्च खोटो जबल निकतो कुओ साबित थो है सोहेल आफरीदी पहरी भी इंतजामी सतह से नाकाम हो हाँ सियासी सतह से भी फैल थी वो है समा वाले फाकी वजीर अता तारड़ चयो है तो सोहेल आफरीदी जी पहली पार्टी ता रिट खत्म थी वही पीटीआई जो दहशतगर्दन सा भी गठजोड़ है जैं सबब हमलन जी मजम्मत भी ना कंदी अख्तियार वली खान चयो तो पीटीआई के लॉन्ग मार्च का भजनो ही हो तो ऐलान छो कयो वो हो
0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के दिफा वाले वजीर खालिद बिन सलमान की मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब विच में दिफाई सहकार बढ़ाने वाली कोशिशों जारी रखने के इतफाक सऊदी अरब में शहरी इक्तसादी हंधन से हमलन बाबत भी कलन की डे वट कई वही सऊदी दिफा वाले वजीर खालिद बिन सलमान है तो मुलाकात दौरान मक्का दिफाई माहदे तहत थियल फौजी सरबराह की गडानी भी जायजो वरतो वो मक्का दिफाई माहदे के अस्करी सहकार में तब्दील करने का अज़म वरताया वो
3: must never be weaponized. Rivers should nourish nations, not divide them. Therefore, any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it.
2: भारत कें भी गलत फहमी जो शिकार न रहे पाकिस्तान के हिस्से जो पानी रोकण या रुख मोड़ने वाली कें भी कोशिश के जंगी कदम समझो वो गडल कौमन के जनरल असेंबली के खिताब कदे वजीर आजम शाहबाज शरीफ जो चवण हो तो नदियों कौमन की उन उझाइंदन विरायदू ना सिंधु दरिया जो निज़ाम न रुगो पाकिस्तानी अवाम पर खिते जिंदगी की जमानत है भारत पारा सिंतास माहदे के एक तरफ मुअत्तल रखने वाले फैसले को कोई भी कानूनी जवाब ना है कश्मीर पाकिस्तान की शरग है रहन कश्मीर की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखी वी पाकिस्तान सऊदी और तुर्किया जो दिफाई माहदो भी कें मुल्क खिलाफ न पर खिते की अमन लाया है
0: अमेरिका इसराइल ईरान के कमजोर करण में नाकाम वया है मुस्लिम मुल्क के विढ़ाया पे वे ईरानी कौम अमरीकी इसराइली साजिश के खिलाफ जमी बीठल है अल जज़ीरा के दिनल इंटरव्यू में ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान है अमरीका इसराइल खिते के कुछ मुल्क के जंग में थिको है अमरीका खिते की दौलत से कंट्रोल बरकरार रखने लाइ मुस्लिम मुल्क के विढ़ाई रो है यमन में थीदड़ शयन से ईरान जो को भी ताल्लुक ना है ईरान तकरार के हल लाइ मदद दियण लाइ तैयार है
4: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they upgrade immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But that deal would not be acceptable.
2: A امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی بابت ایرانی تجویز رد کرنے کی تصدیق کرے چی ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو ایران جنگ ہارائے رہا ہے ابن ہرمز بے کھولنے لائے تیار تھی ویو ماں پان معاہدہ چاہیں تو ایرانی ڈیل قبول نہ ہے ٹرمپ بیہر ابن ہرمز کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نعرو بھی ڈے چڈی تصویر سماجی ویب سائٹ تے جاری کرے چی

0: think that was a mistake. Housing such a large Afghan population on our soil for over four decades, that was a huge, huge mistake, and we are paying for it.
1: What's your message to Taliban now to change their policy toward Afghan women? Why in the beginning Pakistan didn't teach them that?
0: Don't go back like this over there. They will, otherwise they will...
2: पाकिस्तान अफ़गाननि जी 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई. हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़गाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई. अफ़गाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई. पीटीआई ते इतमाद करण जी गुंजाइश न आहे.
3: केस में नामज़द एम पी ए जी गिरफ़्तारी लाइ पुलिस खे स्पीकर खां इजाज़त वठणी पवंदी. वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली जे लिखियल ख़त ते सख़्त तनक़ीद. मोहसिन नक़वी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबलीअ जो लेटर जारी कंदे चयो आहे त जेकॾहिं को एम पी ए कंहिं माण्हूअ खे क़तल करे छॾे त छा पुलिस खे गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ारु कंदी. कानून जे नज़र में सभिनी जी बराबर हुजण जो हीअ कहिड़ो मिसाल आहे. वाह अवां जारी रखो. छा हिन खे ई रियासत मदीना चयो वेंदो आहे?
2: सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे. औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलाल भुट्टो ज़रदारी शुरू कराई. बेपो ख़ासि में मुफ़्त पिंक स्कूटीस विरिहाइण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील नाम अहमद चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरियतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे. सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे. जेकॾहिं पिंक स्कूटीस मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी.
3: वज़ीर आज़म मुलाक़ात में पेट्रोलियम लेवीअ वारो मसइलो हल न कयो त ॿीहर लॉन्ग मार्च कयो वेंदो. लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त एहतजाज पीटीआई जो हक़ आहे. ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में गवर्नर राज वारियूं अफ़वाहुनि जी मज़म्मत कयूं था. जमात इस्लामी जल्द मुख़्तलिफ़ शहरनि में जलसा बि कंदी.
2: بلوچستان کے شہر ڈیرا بکتی میں ضلع چیئرمین کے گھر تے حملوں جوابی کاروائی میں 7 دہشت گرد مارجی ویا. 6 گرفتار. امن فورس جو ایک رضاکار شہید. 3 زخمی تھیا. تکی میں روڈ تعمیر کندڑ کمپنی کے کیمپ تے دہشت گردن جو حملوں اڑا پوری تھوا. فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ایک سیکورٹی گارڈ شہید بھی زخمی.
3: पाक बैरिया जी अरबी समुंड में कार्रवाई वॾे मक़दार में मंशियात पकड़े वरिती. ISPR मूजिबि पाक नेवी जे जहाज़नि हुनैन ऐं यरमोक जे अरबी समुंड में कार्रवाई दौरान 2800 किलो खां वधीक मंशियात पकड़ी वई. समुंड में शकी ॿेड़े जी तलाशी दौरान गुझनि खाननि में लिकायल मंशियात मिली. नेवल चीफ पारां अमले जी आला पेशेवराणियुनि सलाहियतुनि जी वाखाण पकड़ियल मंशियात जी आलमी मार्केट में मालियत अटिकल 75 करोड़ रुपया आहे.
2: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जी मुबैन लताड़ ऐं बेक़ाइदगियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ शागिर्दनि पारां कराची ॾांहुं लॉन्ग मार्च जो ऐलान. सिंध स्टूडेंट सेक्शन 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराची ताईं पैदल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो. अॻवाननि चयो आहे त लॉन्ग मार्च टटे वारे रस्ते तां थींदो, कराची पहुचंदो. CM हाउस आड़ो एहतजाज कयो वेंदो. लॉन्ग मार्च सबबि हैदराबाद में क़ाइमु एहतजाजी कैंप आरज़ी तौरु ख़तमु कई वेंदी.
3: थारूशाह में पाणी वारी बोरिंग ते वेंझण दौरान सोलर मां करंट लॻण सबबि 2 ॼणा फौत, 2 ज़ख़्मी. हरीपुर पाड़े में वाकियो पेश आयो. पुनू ऐं राजकुमार बागड़ी सोलर मां करंट लॻण सबबि फौत थी विया. वारसन मूजिबि 4 नौजवान सोलर वारी बोरिंग में तड़ करे रहिया हुआ त सोलर वारे तार लोही पाइप ते लॻण करे पाणीअ में करंट थी वियो, जंहिं सबबि 4 ॼणा ज़ख़्मी थी बेहोश थिया. 2 ॼणा पुनू बागड़ी ऐं राजकुमार बागड़ी फौत थी विया, 2 ज़ख़्मी थिया, जिन खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे.
2: हैदराबाद में कतल थियल व्यापारी नरेश कुमार जो केस अणजातल जवाबदार खिलाफ दाखिल टंडो यूसुफ पुलिस मीर हुसैनाबाद के रवासी एसर मिल के फरियाद से संदस पुट नरेश कुमार के कतल जो केस दाखिल कयो केस मौजिब अणजातल जवाबदार नरेश के कतल कयो वारिसन पारा जवाबदार के गिरफ्तार करण जो मुतालबो
3: अफ्रीकी मुल्क कांगो में फौजी जहाज किरी तबाह बिन ऑफिसरन समेत 14 जणा अजल जो शिकार कांगो जी फौजी तर्जमान चयो आहे त जहाज हादसे में फौत थींदड़न में फौजी अदालत जो सरबराह ऐं ऑडिटर जनरल शामिल आहिनि हादसे जा कारण मालूम करण लाइ जांच जारी आहे

0: पंहिंजे शहर पेंका पे बरसातनि तबाही मचाए छॾी। बोड वारी सूरतहाल, रोडनि ऐं रस्तनि ते पाणी बीठल, रवासी घरनि ताईं महदूद थी विया।
1: AI is powerful enough to end all of humanity?
2: AI is certainly powerful enough to drive events that, you know, cause a billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tool.
3: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु अरब इंसान जी मौत जो सबबु बणिजी सघे थी। बिल गेट्स AI जे ख़तरे खां दुनिया खे आगाह करे छॾियो। माइक्रोसॉफ्ट जे बानी बिल गेट्स जो चवणु आहे त AI जी हाणे वारे तेज़ रफ़्तार मुदाख़लत खां सवाइ वॾो इंसानी ख़तरो बणिजी सघे थी। ॾोहारी AI जो ग़लति इस्तेमालु करे सघनि था।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में ना है सा मोहब्बत ऐ सचाई लबन ते मुर्का विखरल दिलन में आ बे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आऊं आहियां आबि चौहान ऐं आवां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क। जीए एफएम नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानाइतनि महबूबनि दिलरुबा दोस्तनि पिणी प्यारनि खे वेलकम भली कार ख़ुशि

ई उम्र अजाई वई मीह पुड़ियो थी आई वई छाव छपर जी कहड़ी डे छाव छपर जी कहड़ी डे धरती आहे पराई वई निमजा पन्न कका थी व्या निमजा पन्न कका थी व्या चार घड़ियों हुई साई वई पहंजी उम्र अजाई वई निमजा पन्न कका थी व्या चार घड़ियों हुई साई वई चंद्र मथा हूं मकलियते चंद्र मथा हूं मकलियते सारी रात सजाई वई पहंजी उम्र अजाई वई मूं त चयो हो खड अथव मूं त चयो हो खड अथव हा पर विख वधाई वई पहंजी उम्र अजाई वई

0: दोस्तों अच्छो त
1: हमर अचन्ना जी खूबसूरत आवाज में
0: गीत बुधूं था
1: इश्क कहानी कदे कैसा जानेबो जाना ना रहो

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी खाने पहिजी स्किन खेडियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अमा जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
4: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोए अचो बालाज मोटर्स मोरो ते
5: जिते तवा के मिलन थियो टोयोटा सुजुकी होंडा
4: किया स्पोर्टेज आई बियन कंपनी जो मुख्तलिफ गाड़ियों जिन में जापानी इंपोर्टेड आई हाइब्रिड गाड़ियों पिन शामिल आहन
5: तवा जी पसंद जरूरत आई बजट मुताबिक गाड़ी जी चूंड में बेहतरीन सहकार
4: बालाज मोटर्स मोरो ते हर किस्म जी गाड़ियों जी खरीद आई विक्रो जी सहूलत मौजूद आहे मुनासिब अघन आई बेहतरीन डील सा
5: इनखा अलावा पूरे पाकिस्तान में आवा जिते भी होजो पैजी गाड़ी बुक कराए सगो था
4: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अजी राप्तो करियो 03002963322
6: खबरी डॉक्टर जमशेद अबड़ो दंदने वात जे बीमारिन जो माहिर सर्जन एडिशनल चीफ डेंटल सर्जन चांडका मेडिकल कॉलेज ए हॉस्पिटल लाड़काणो 32 सालन जो तजुर्बो रखंदड़ ए 32 सालन खां बाकरानी रोड वारे डेंटल क्लिनिक ते मरीजन जी खिदमत कंदड़ डॉक्टर साहब हर किस्म जा जदीद दंद लगाइन था ए दंदन ए वात जे सबनी बीमारिन जो बेहतरीन इलाज कंदा आहिन डॉक्टर जमशेद अबड़ो दंदन ए वात जे बीमारिन जो

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: कलाम अमदा
2: जी,
1: मैं गुबकई मुते आज खास है ना या साथ मेहरबानी थी साईं।
2: बिल्कुल शामिल कयो था प्रोग्राम में, को दोस्तन जो नाम शामिल कंदो
1: साईं। दोस्त असो बात रेडियो में प्रोग्राम कंदो आ शाबाद असो दोस्त लियाकतली पठान डॉक्टर असो वो भी प्यारो दोस्त वो भी प्रोग्राम हुए तो पो दीदार लंजवाणी असो प्यारो भाई वो भी प्रोग्राम बुझे तो जो दोस्त संगत बुझे तो
2: असलामी थैंक यू लव यू प्रोग्राम बुधा रहो शामिल कदाजी फरमाइश थैंक यू अस्सलाम वालेकुम केर साईं के था का गुलाम सरवर जतो ही बचल शाम आने का वेलकम बली कर खुशामदीद खेड़ालन साईं खुश आयो
1: हेल दाउ कर जा साईं तो प्रोग्राम बुदा दिल खान
2: लक तोरा कने का बुदो पे मुजो प्रोग्राम
1: साईं प्रोग्राम गलो को बुदा तो
2: रोज बुदो दाउ
1: आ भाई
2: वाह वाह वाह वाह डाडी खुशी दी बुद्धि करे के लगदा प्रोग्राम
1: प्रोग्राम भले लगदा
2: ये तो छा चवण चाहि दो पे दिल जी गाल
1: असाने कलाम बुधरायो
2: जी
1: बोलो फकीर आयो
2: जी कोशिश क्यों था शामिल कंदा से प्लेलिस्ट में प्रोग्राम बुधा रजो बुधायो केड़ो
1: बोलो फकीर केड़ो भी ये कलाम
2: ढोल फकीर जो केड़ो भी किन दोस्तन जे नाम करण चाहि दो उनन जा नाम शामिल करण चाहि दो
1: आराम जे तो
2: जी
1: ढोल फकीर जे तो ये जा जे तो ठोकन जे तो नीर जे तो
2: जी
1: मुंडे नंडो पकेवा मादल मलान जते
2: जी सबनी ये सबनी के सलाम मु तरफा
1: वालेकुम
2: बड़ी मेहरबानी लव यू लख लाइक
1: आ दोनों फगरो कला वेरो बुधवार
2: लाजमी शामिल कदास प्रोग्राम बुधवार जो थैंक यू।

0: दोस्तो कोशिश होती थे न्यूज़ ब्रेक आज में आजाही तो कॉल शामिल कर जी दोस्तों आवाजी फरमाइशों भी अखन ते पर मोजी प्रायोरिटी होती है तो सब हां वद में वद आवाजू फोन कॉल शामिल कर जन जा कारण तो दोस्तन जो दम थे ऐसा प्रोग्राम आहे आ आवा सा गल बोल करे आवा सा पंजी दिल जी गल कदा हो सा के बेहद खुशी थिंदी है लाइन पे कॉलर मौजूद है अस्सलाम वालेकुम केयर साईं के थागा शफकत बड्डी कितना प्यारा
1: शक्कर का
0: शक्कर
1: वेलकम
0: वेलकम वेलकम भली कार बड्डी साहब खड़ाल खुश है लख लख कुर्ब लख थोरा
1: डायरी पे आए
0: जी
1: तो अर्जी यो आए तो मेरे प्रोग्राम तो तमाम भलो आ जर कुछ चवन चवन चवन
0: जो दिल करे असल में दिल जी गाल है ना प्रोग्राम तब जो
1: दिल जी गाल है आज तमाम बेहतर एक इन में एक अद थोड़ी
0: बॉडी प्रोग्राम में रखियो है आज ता नाव खायो आ बरकत मुझे शहर जो आ बरकत चाचा है दोस्त आ एडवोकेट मंजूर चौहान साहब जो पुरानो जो गीत और गाया थई असा के सारी दस बरकत आएगी एल्बम में गीत हो रोशनी तुझी चंड सितार में शामिल किया बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: थैंक यू कहेंगे
1: जाहिद शेख
0: जी साईं केन सुनाने साईं जाहिद शेख साहब के
1: हां बोली कर गला देने को साईं भा मानवा
0: जी साईं
1: जो पुत्र लाल मोहन जानू ठकी
0: जी सर
1: मैं सभी संगत में बोल ना लट फोर जाम में कथा करी गए मानो वक्त वरी के देख भी टाइम दे
0: बिल्कुल वरी
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
4: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
5: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
6: GA FM 88.
7: Sindh Ki Awaaz.

0: think that was a mistake, housing such a large Afghan population on our soil for over four decades. That was a huge, huge mistake, and we are paying for it.
1: What's your message to Taliban now to change their policy toward Afghan women? Why the beginning Pakistan didn't teach them that?
0: Don't go back like this over there. They will call it, otherwise they will...
2: पाकिस्तान अफ़ग़ाननि जी 40 सालनि ताईं महिमान नवाज़ी कई. हाणे महिमान नवाज़ी जी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजी सरज़मीन ते अफ़ग़ाननि खे पनाह ॾेई ग़लती कई. अफ़ग़ाननि खे पंहिंजी सरज़मीन ॾेई ग़लती कई. पीटीआई ते एतमाद करण जी गुंजाइश न आहे.
3: केस में नामज़द एम पी ए की गिरफ़्तारी लाइ पुलिस के स्पीकर का इजाज़त वठणी पवंदी. वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी की ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली जे लिखियल ख़त ते सख़्त तनक़ीद. मोहसिन नक़वी ख़ैबर पख़्तूनख़्वा असेंबली जो लेटर जारी कंदे चयो त जेकॾहिं को एम पी ए कंहिं माण्हू खे क़तल करे छॾे त छा पुलिस खे गिरफ़्तार करण खां अॻु बि स्पीकर जी इजाज़त जो इंतज़ार कंदी रहंदी. कानून जे नज़र में सभिनी जी बराबरि हुजण जो हीअ कहिड़ो मिसाल आहे. वाह, अवां जारी रखो. छा हिन खे ई रियासत मदीना चयो वेंदो आहे?
2: सिंध खां सवाइ ॿिए कंहिं बि सूबे में औरतुनि खे मुफ़्त स्कूटी न पई ॾिनी वञे. औरतुनि लाइ पिंक स्कूटी स्कीम बिलावल भुटो ज़रदारी शुरू कराई. मीरपुर ख़ासि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ विरिहण वारी तकरीब ते ख़िताब कंदे सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील लाम अहमद चयो आहे त हारियुनि खे हारी कार्ड ऐं पोरियतनि खे लेबर कार्ड ॾिनो पियो वञे. सूबे में 50,000 औरतुनि ड्राइविंग लाइसेंस लाइ अप्लाई कयो आहे. जेकॾहिं पिंक स्कूटीज़ मर्द हलाईंदो त स्कूटी ज़ब्त कई वेंदी.
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
5: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
6: सुनते रहो जीए एफएम 90.8.